हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 MHz पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। गीत सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रिक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
4: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
6: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
7: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रिक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपने रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नई पुरानी 91.2 MHz पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार।

अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा, इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूर

0: जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
1: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
0: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
2: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
3: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
4: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और साथ ही अपनी सेहत का ध्यान बेहद अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। तो आज यानी कि 10 मई 2026 की बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत आप सभी ने कर दी है। जी दोस्तों, संडे का दिन है, मस्ती भरा दिन है, लेकिन मस्ती तो खैर धर्मशाला के लोगों की बात करूं तो खेतों में ही हो रही होगी, क्योंकि कल भी छुट्टी थी सेकंड सैटरडे की और आज संडे की छुट्टी। तो भरपूर जो है जो ऑफिस के लिए जाते हैं या फिर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनका खूब सारा फ़ायदा उठाया होगा घर वालों ने, क्योंकि छुट्टी बड़ी मुश्किल से आती है और आप सभी जानते हैं मौसम ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय दिया है। तो ऐसे में तो जैसे हो सके जल्दी जल्दी से बस काम को निपटाना है, फटाफट से ख़त्म करना है। तो दोस्तों, सभी का यही हाल है, मेरा भी यही हाल है फिलहाल तो हमारा यानी कि। तो क्या कर सकते हैं, मौसम है, मौसम से लड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने हिसाब से हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी भी उसी तरह से कर रहे हैं, एक तरफ डर है और एक तरफ सुकून भी है कि फटाफट से फ्री हो जाएंगे। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ, यानी कि रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो जरूर दोस्तों, खेतों में काम को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि अपनों के साथ जब सभी एक साथ मिलजुल कर काम करने लग जाते हैं ना, तो वो काम भी एक अलग ही इंजॉय देता है। और साथ ही साथ तो आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, क्योंकि ना तो आपको देखने की ज़रूरत है, ना तो आपको बैठने की ज़रूरत है, बस साइड में रख दीजिए और आराम से काम कीजिए और साथ ही साथ इंजॉय भी करते रहिए, है ना, कितनी बेहतरीन बात। ना समय की बर्बादी, ना काम की बर्बादी, कोई बर्बादी नहीं है, बस फायदा ही फायदा है, सुकून है, शांति है और प्यार है। तो आइए दोस्तों, अपने इस प्यार को, अपने इस रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं, और वो किस तरह से बनेगा, हमारे प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत और शुरुआत करते हैं मनोरंजन की।

दोस्तों, इस समय जो ये मौसम है ना, सचमुच बहुत ही कातिल सा है, बहुत ही, क्योंकि इस समय जो है हर किसी की आंखें बस मौसम के ऊपर ही टिकी हुई हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आज के दिन की बात करें तो उठे तो बहुत ही काले काले से बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश होने ही वाली है। खास करके मैं धर्मशाला के आसपास क्षेत्रों की बात करूँ, आगे पीछे तो हो सकता है कि ना भी हो, मौसम साफ हो, लेकिन हाँ फिलहाल यहाँ की हम बात करें। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है मौसम खुल गया है, यानी कि थोड़ी सी धूप जो है वो देखने को मिली है, तो थोड़ी सी लोगों को राहत भी जरूर मिली होगी कि नहीं, आज का दिन रुक जाए या दो तीन दिन और रुक जाए तो बस हम फटाफट से अपने काम से फ्री हो जाएंगे। तो खैर दोस्तों, सभी के मन में यही उथल पुथल और रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं और बस भागा दौड़ी वाला काम जो है सभी के सर पर जुनून सवार है। क्या करें, फसलों का काम है और इसी तरह से चलता है। एक साथ मिल के करें तो थोड़ा बढ़ जाता है, आसान हो जाता है, लेकिन गेहूं की हम बात करें ना दोस्तों, तो थोड़ा लड़ाई वाला माहौल भी हो जाता है क्योंकि लोग कटवाने नहीं देते हैं, तो बहुत सारी बातें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी की एक सीढ़ी होती है जिसे हमें पार करना होता है। खैर मौसम की हम बात करें तो इस समय धर्मशाला के तापमान की अगर हम नज़र दौड़ाएं उसकी तरफ, तो इस समय लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है तापमान आप सभी धर्मशाला का महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात तो हमारे लिए मौसम विभाग की अपडेट है, क्योंकि उसके बिना तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए जानते हैं कि मौसम विभाग का क्या कहना है। तो हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के तेवरों के बीच मई के महीने भी मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है। जी दोस्तों, राज्य में जहां कई क्षेत्रों में हो रही जोरदार ओलावृष्टि किसान और बागवानों को करोड़ों का आर्थिक नुकसान जो है उससे मिल रहा है या पहुंचा है, वहीं बेमौसमी बारिश से पहाड़ी इलाकों में ठंडक बनी हुई है। निचले व मैदानी इलाकों में गर्मी का असर ना के बराबर है। राहत की बात यह है कि इस महीने कहीं भी हीट वेट लोगों को परेशान नहीं कर रही है, लेकिन फसलों के लिए तो परेशान जरूर कर रहा है ये मौसम। खैर दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते हैं। और विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक 10 मई यानी कि आज के दिन मौसम के साफ रहने का अनुमान है और इसके बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा, जिससे कि 11 से 13 मई तक राज्य में मौसम का कहर फिर से बरपाएगा। खैर दोस्तों, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा किस तरह से क्या होने वाला है। 12 और 13 मई को तो गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 से 15 मई को भी मौसम इसी तरह से खराब रहेगा। तो ये आप सभी के लिए अपडेट है सतर्कता से भरी और फटाफट से काम निपटाने के लिए, क्योंकि वैसे तो लगभग दो छुट्टियों में लोगों ने ढेर सारा काम कर लिया है, लेकिन फिर भी अकेले थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। कुछ लोग जो अकेले काम करते हैं तो उन्हें समय लगता है, तो थोड़ा सा क्या पता मौसम साथ दे ही दे, पर भरोसे भी नहीं बैठ सकते हैं। जैसे ही टाइम मिले फटाफट से फ्री हो जाइए, यही बोल सकते हैं। जी दोस्तों, तो जोर शोर से आज का दिन लगा दीजिए और फिर आराम से, शांति से, सुकून से बैठ लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, आइए मौसम की अपडेट के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और बहुत ही खास दिन है आज का, बहुत ही स्पेशल है, जरूर उस पर भी बात करेंगे, उसी पे बात करेंगे खास करके। लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा, खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे

0: हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कहा कि आज का दिन बेहद खास, बेहद स्पेशल दिन है दोस्तों। सभी दिनों में से अलग से हटकर ये दिन हमारी जिंदगी में खास अहमियत रखता है। तो क्या है आज के दिन, भूल नहीं सकते आज के दिन को। बिल्कुल दोस्तों, अपनी बातें हजार कर लीजिए, लेकिन आज के दिन की अहमियत लाखों में, करोड़ों में कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कोई कीमत ही नहीं है, समझ ही चुके होंगे। जी दोस्तों, आज 10 मई 2026 का दिन है और आज के दिन आप सभी मना रहे हैं बहुत खास दिन। कौन सा? अरे आप सभी में एक्साइटमेंट हो रही है, जो जानते हैं उनको तो नहीं, लेकिन हाँ जो नहीं जानते हैं उनके मन में ये उथल पुथल कि ऐसा क्या खास है। अरे भाई, आज के दिन आप सभी मना रहे हैं मदर्स डे। जी दोस्तों, माँ शब्द अपने आप में ही एक बहुत खास अहमियत, एक बहुत ही खास रोल जो है हमारी ज़िंदगी में अदा करता है। माँ के बिना जिंदगी अधूरी से लगती है। माँ है तो सब कुछ है, कोई दौलत, कोई भी धन जो है वो माँ की ममता के आगे बढ़कर नहीं है, मतलब माँ की ममता से बढ़कर नहीं है। माँ का प्यार बच्चों के लिए बिना कहे शब्दों में भी झलकता है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए दिन रात बिना शिकायत, बिना कुछ कहे उनकी परवाह करती है, उनके लिए मेहनत करती है, तो बच्चों का भी दायित्व बनता है कि आज का दिन अपनी माँ के लिए स्पेशल बनाएं। खैर, आज का दिन नहीं, ज़िंदगी का तो हर दिन खास होना चाहिए, लेकिन आज के दिन एक अलग बात है। जी दोस्तों, तो ज़रूर सोचिए, विचारिए कि क्या खास करने वाले हैं, क्या स्पेशल करने वाले हैं आज के दिन माँ के लिए। तब तक समय हो गया है कुछ खास जानकारियों का। जी दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं और समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद स्पेशल बात पे जरूर वापस आएंगे, इस स्पेशल दिन की खासियत पे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं जानकारियां।
1: नई इबारत बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन, और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल हो रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब लाहौल स्पीति के गांवों में विश्वास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांव तेजी से बदल रहे हैं। स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गांवों में नई उम्मीद देना है ताकि समय पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस कर सकें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और मानी जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। यहां सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग दुर्गम गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ रहे हैं। वहीं 5G टावर लगने से अब दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल क्रांति पहुंच रही है। पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं को होम स्टे और टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। तारावीरा केसर और तिवक थान जैसे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान दिलाने के लिए आधुनिक मशीनें और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गांव में नई उम्मीद जगाना है ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से यह आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। ये परियोजना इस वर्ष जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज शिमला में कल बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों व युवा अधिवक्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी जो इन संवेदनशील व जटिल मुद्दों को प्रभावी रूप से समझ सके। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 400 से अधिक शोधार्थियों, प्राध्यापकों, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आज समापन होगा। ये आयोजन 8 मई से हिमाचल पर्यटन विभाग, ओम किन्नौर स्थानीय शाखा, वन विभाग और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गौली क्षेत्र में आयोजित इस फेस्टिवल में स्थानीय लोगों, पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विशेषज्ञों, फोटोग्राफरों, कलाकारों और पर्यटकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। फेस्टिवल के पहले दिन संगीत प्रस्तुतियां, पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण कार्यशालाएं, कविता पाठ, फोटो प्रदर्शनी, फन गेम्स, फूड स्टॉल, स्मृति चिन्ह स्टॉल और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही पारंपरिक उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला। आज फेस्टिवल के अंतिम दिन पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण, विशेषज्ञ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ है। हालांकि प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह व शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, रिकॉर्ड गुम होने पर भू स्वामी का हक खत्म नहीं हो जाता। अदालत ने कहा, प्रशासनिक चूक की सजा नागरिकों को नहीं दे सकते। लैंड बहाली मामले में पुनर्विचार का आदेश। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, 31 मई तक तबादलों की फाइल न भेजें, शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी टालने का आग्रह। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, राज्य में कल से फिर झमाझम 12 व 13 को भारी बारिश के आसार, ओलावृष्टि तूफान का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने इस समय ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ आप सभी अपने दिन की शुरुआत बेहद प्यारे और खूबसूरत इस समय बना रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी इन प्यारी प्यारी सी बातों के साथ बढ़ते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम में आगे। दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जिंदगी आपको विनम्र बनाती है, क्योंकि ये आपको बड़ी कामयाबियों के पीछे भागने से हटाकर सादगी जैसे कि भरपूर नींद, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम और मन की शांति को महत्व देने पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करती है। ये आपको फालतू की बातें और बहस में एनर्जी बर्बाद करना बंद करना सिखाती है और ये बताती है कि असली दौलत शांत पलों, शुक्रगुजारी और अच्छी सेहत में मिलती है, ना कि चीजों में जिनके पीछे हम सुबह से लेकर शाम तक बस भागते रहते हैं और कई बार तो अपने आप को भी भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मन क्या चाहता है। तो ज़रूर दोस्तों, सबसे पहले अपने मन की सोचिए, लोगों की बातें बाद में सोचिए कि लोग क्या कहेंगे या क्या करेंगे। सबसे पहले खुद की खुशी को अहमियत दीजिए, खुद को अहमियत दीजिए। दुनियादारी तो आती जाती रहती है, वो आएगी जाएगी, लेकिन अपना आप जिस दिन साथ छोड़ जाए तो ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। अब आते हैं आज के दिन की खासियत पे, आज के दिन की स्पेशलिटी पे। जी दोस्तों, तो क्या सोचा आप सभी ने, किस तरह से आज के दिन को अपनी माँ के लिए खास बनाया जाए, क्या ऐसा स्पेशल किया जाए कि उनके चेहरे पर

मुस्कान आ जाए। क्योंकि दोस्तों माँ जो है ना, घर में हर किसी के चाहे दुख हो चाहे खुशियाँ हो, हर एक पल को संजो कर रखती हैं। हर एक चीज़ की उन्हें पहले से ही जो है ना आभास सा हो जाता है कि नहीं ये चीज़ पहले करनी है, या उनके बच्चे परेशान हैं तो उन्हें वो भी पता चल जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि वैसे तैसे करके उनके मूड को चेंज किया जाए, उन्हें थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान जो है वो हमेशा रहे। तो जो हर किसी के चेहरे के मुस्कान के लिए इतना सोचती हैं, तो उनके लिए आज के दिन आप भी तो कुछ कर सकते हैं। खैर, करना तो हर दिन चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ का प्यार जो है वो कभी कम नहीं होता। भले ही बच्चे माँ से मुंह मोड़ लें, लेकिन एक माँ अपने बच्चों में कभी भी ना तो कोई भेदभाव और ना ही कभी उनसे प्यार करना कम करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। हाँ, कई बार कुछ हो भी जाता है वो अलग बात होती है, लेकिन जितना हम कह सकते हैं उतना यही कह सकते हैं। दोस्तों माँ प्यार की वो मूरत है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। माँ की ममता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दौलत के पीछे हम भागते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो कि माँ की ममता, कई बार बच्चे उसे ठुकरा देते हैं अनजाने में, बचपने में। वो समझते ही नहीं कि माँ बाप का प्यार हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। खुद परेशानियों में रहकर जो बच्चों को हर दुख से दूर रखते हैं, एक दिन वो बच्चे अपने माँ बाप को उस दुख के मंजर में पहुँचा देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ एक शब्द नहीं, एक पूरा संसार है। तो संसार ही जब माँ है तो उससे बढ़कर और क्या ही चाहिए दुनिया में। हर दिन माँ का होता है, लेकिन आज का दिन सिर्फ उनके नाम। जी दोस्तों, तो ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए खुशी के साथ, उन्हें समय दीजिए। जिस समय के लिए कई बार बच्चे भी तरसते हैं और माँ बाप भी तरसते हैं, तो ये जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, स्पेशल मोमेंट्स होते हैं ना, ये हमें खास बनाने चाहिए, यादगार बनाने चाहिए। क्योंकि माँ शब्द अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मूरत है। तो आइए माँ शब्द के लिए माँ का ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz से।

सो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, कार्यक्रम में समय एंजॉय कर रहे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से सफर में आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत का रुख करते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, प्रदेश में बेहतर हवाई संपर्क सुविधा और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस दिशा में एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली हवाई सेवा 10 मई यानी कि आज से पुनः बहाल की जा रही है और ये उड़ानें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को फ्लाइट दिल्ली से सुबह 7:20 पे रवाना होकर शिमला सुबह 8:35 पे पहुंचेगी, जबकि वापसी की हवाई सेवा शिमला से सुबह 11:30 बजे, उड़ान दिल्ली दोपहर 12:40 पर जो है वो पहुंचेगी। शनिवार को उड़ान दिल्ली से सुबह 7:50 बजे रवाना होकर सुबह 9:05 पे शिमला पहुंचेगी और वापसी की फ्लाइट 12:00 बजे से रवाना होकर दोपहर 1:10 पे दिल्ली पहुंचेगी। तो इस तरह से ये शेड्यूल जो है इस उड़ान का रहेगा। जी दोस्तों, इससे प्रदेश में पर्यटन व्यापारिक गतिविधियों को भी जो है गति मिलेगी और हफ्ते में ये फ्लाइट 6 दिन जो है इसकी उड़ानें रहेंगी। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए। तो आइए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से गीत की ओर। इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत।

सो 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज के दिन बहुत ही खास दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही खास पलों को आप सहेज कर रख सकते हैं, यादगार बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपनों के साथ बिताए पल जो होते है ना वही हमारे लिए खास होते हैं। बाकी तो पैसे कमाने के पीछे हम भाग रहे हैं या फिर रिश्तों को कमाने के पीछे भी कई बार हम भागते रहते हैं, लेकिन पैसे तो कहते हैं ना दोस्तों कि हाथों की मैल है, एक दिन आएगी और दूसरे दिन चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो इसके पीछे तो कभी भी रिश्तों को जो है हमें तोड़ना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। और साथ ही बात करें तो अपनी ज़िंदगी के इन खास लम्हों को इन छोटी छोटी सी बातों के लिए गंवाना नहीं चाहिए। तो आज का दिन माँ के लिए है और माँ शब्द अपने आप में ही एक खास अहमियत झलकती है। जी दोस्तों, जागिए और मुस्कुराइए क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। वैसे तो हर दिन माँ का होता है, लेकिन आज कैलेंडर ने हमें एक बहाना दिया है उस इंसान को थैंक यू कहने का जिसने हमारी पहली धड़कन सुनी थी। आज मदर्स डे है, आज हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, आज हम यादों का पिटारा खोलेंगे। जी दोस्तों, जब उन पलों को याद किया जाता है, माँ की उन छोटी छोटी सी बातों के पे जो है ध्यान दिया जाता है, तो सचमुच चेहरे पे मुस्कान और एक अलग ही सुकून मिलता है। जब हम बहुत सारी परेशानियों में होते हैं तो माँ एक बार सर पे हाथ ही रख देना तो सच में एक ऐसा लगता है कि वो परेशानी दूर हो गई। तो ये होता है माँ का प्यार, माँ बाप का प्यार। अगर हम पिता की बात करें ना दोस्तों, पापा की हम बात करें, तो वो कभी शो नहीं करेंगे, लेकिन उनकी डांट में भी कई बार प्यार छुपा होता है, कई बार नहीं हमेशा ही छुपा होता है, लेकिन वो कभी जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर पिता ने प्यार दिखा दिया तो बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा डर होना भी ज़रूरी, क्योंकि माँ तो इमोशनल हो जाती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं, क्योंकि वो बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, कभी उदास नहीं देख सकती, तो इसलिए वो कई बार उनकी गलतियों पे पर्दे भी डालती हैं, उनको बचा भी लेते हैं डांट से या फिर किसी परेशानी से। कई बार बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं और माँ को सब पता होता है, लेकिन वही ममता, वो मोह जो है वो उन्हें बांध देता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि प्यार जो है बच्चों को सिर्फ सही राह की ओर लेकर आने के लिए होना चाहिए। गलत रास्तों पे जब वो जाएं तो एक माँ ही उन्हें सही राह पर ला भी सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्यार की मूरत हैं, वो अगर चाहें तो बच्चों की जिंदगी संवार सकती है। तो यही होता है माँ का प्यार। तो आइए दोस्तों, इतनी खास बात है तो जरूर गाने भी तो खास होने चाहिए ना। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz से अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, तो सच में माँ प्यारी प्यारी सी ही होती है, उनकी डांट में भी कई बार प्यार छुपा होता है और बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं, माँ भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वो गुस्सा सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में सही राह के लिए होता है। माँ बाप का डांट जो होती है ना, वो हमें सही राह दिखाने के लिए होती है। तो कई बार गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो ये बच्चों को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि जो इतना दुख झेल कर हमें यहाँ तक पहुँचाया है जिन्होंने, तो कुछ ना कुछ वजह या कुछ ना कुछ रीजंस हमने ही दिए होंगे जो हमें डांट पड़ रही है या सुननी पड़ रही है, जो भी है। दोस्तों, किसी ने पूछा कि वो कौन सी जगह है जहाँ हर गुनाह माफ हो जाता है। सोचिए कौन सी जगह है। एक ही तो जगह है, माँ का दिल। चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ जरूर देखी है सभी ने। जी दोस्तों, माँ की वो एक बात जो कभी पुरानी नहीं होती, चाहे आप 5 साल के हों या 50 के, माँ का वो डायलॉग क्या है जो आज भी आपको सुनने को मिलता है कि कहीं भी आप जाते हैं तो माँ की एक ही बात निकलती है मुंह से कि बस फोन कर देना। कहीं भी जा रहे हैं, समय से पहुंच कर फोन करना। खाना खाया नहीं खाया, बाकी सब लोग, एक गाना भी है ना दोस्तों कि सभी पूछते हैं कि पैसे कितने कमाए या क्या किया दिन में, लेकिन एक माँ ही है जो सिर्फ ये पूछती है कि खाना खाया या नहीं खाया। तो कहते हैं ना कि हम चाहे दुनिया में किसी कोने में भी चले जाएं, लेकिन ये जो प्यारे से मोमेंट्स, प्यारे से पल होते हैं ना माँ के पास, वो क्या ही कहना, कोई कीमत नहीं है और ना ही शब्द हैं, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता माँ की ममता को। तो फिलहाल आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के साथ 91.2 MHz से।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। तो हमारी ये प्यारी सी बातचीत और ये प्यारे प्यारे से गीत इसी तरह से जारी रहेंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं डर लेना।
0: दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ 91.2 MHz पर। इस समय आप सभी गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ अपने दिन को एंजॉय कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से पलों के साथ। जी दोस्तों, तो हर पल खास किस तरह से बनाया जाता है, बस छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में अगर रखा जाए तो सचमुच खास बन सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है हर चीज़ को एक तरह से अहमियत देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को बिना समझे जो है उसे नज़रअंदाज

करते हैं, तो उसी वजह से कई बार जो है हमारी ज़िंदगी के वो ख़ास पल हमसे दूर हो जाते हैं, या फिर हम खुद दूर कर देते हैं, ये ही कह सकते हैं। दोस्तों कोई किसी का नहीं होता, ये बात सुनने में भले ही हमें थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन जब माँ की बात आती है, माँ की माँ शब्द जब आ जाता है किसी भी बात में, तो कहते हैं ना दोस्तों, चाहे आप माँ बाप को कितना भी उन्हें दुख पहुँचा लो, कितना भी उन्हें हर्ट कर लो, लेकिन उनका प्यार उन लाख कोशिशों के बाद भी वो वैसे के वैसा ही रहेगा, क्योंकि माँ बाप जो है ना कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कई बार बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, इतना दुखी कर देते हैं माँ बाप को कि वो मजबूर हो जाते हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए। तो क्या माँ बाप ये सब डिज़र्व करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों हमारी सोच जो है, हमारे विचार कहीं ना कहीं हमें बहुत पीछे की ओर ले जाते हैं, बहुत हम एक तरह से अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं, लेकिन सोच हम बहुत अलग तरीके से बदल रहे हैं। हम खुद की मेंटालिटी को इस तरह से बदल रहे हैं कि इंसानों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, तो इस बात पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, माँ वो शब्द है जिसे बोलते ही दिल को सुकून मिल जाता है, जिसने खुद के सपनों की नींद बेच दी सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे चैन से सो सकें। माँ वो है जो थक जाती है पर कभी दिखाती नहीं। माँ वो है जो रोती है पर हमें हंसाने के लिए मुस्कुरा देती है। उसके आंचल में वो शक्ति है जो हर दर्द को भी दवा बना देती है। माँ एक रिश्ता नहीं, पूरी दुनिया की दुआ है जी। दोस्तों, माँ से ही हमारी पहचान है, माँ से बड़ी कोई पहचान नहीं। यही है माँ शब्द की अहमियत, जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई मोल नहीं। दुनिया में सबसे अनमोल ये रिश्ता, ये प्यार। आइए इसी के साथ जानते हैं एक और खास जानकारी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों और अभिभावकों की उत्सुकता अब खत्म होने वाली है। बोर्ड ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि वर्ष 2026 की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम 10 मई यानी कि आज रविवार को जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हमारा उद्देश्य परिणाम समय पर घोषित करना है, जिससे विद्यार्थी बिना किसी देरी के अगली कक्षाओं में अपनी पसंद के संकायों में प्रवेश ले सकें और उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित ना हो। जी दोस्तों, तो जो इंतज़ार और जो उत्सुकता और एक तरह से डर, जो डर बच्चों के मन में, कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में भी वो डर रहता है, क्योंकि जब बच्चे सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली खुशी उनके शिक्षकों और उनके माता पिता के चेहरों पर ही देखने को मिलती है। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन माँ बाप कभी जताते नहीं हैं कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं और फिर भी हमें कोई मतलब शाबाशी नहीं मिलती है, कोई हमारे एफर्ट्स को जो है मतलब बताया नहीं जाता। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि माँ बाप इसलिए भी नहीं जताते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपनी तारीफ सुनते हैं ना, तो हम और ज़्यादा हवा में हो जाते हैं और एक तरह से घमंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो माँ बाप तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे राह भटक जाएं और गलत रास्तों की ओर चले जाएं, क्योंकि जब घमंड घर कर जाता है ना, तो फिर हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो कई बार चुप्पी में भी बहुत कुछ, और जो डांट टपट है उसमें भी हमारी ज़िंदगी को संवारने के छोटे छोटे से कदम ज़रूर रहते हैं माँ बाप की तरफ से। और एक तरफ माँ इमोशनल होती है, भावनाओं में बहक जाती हैं, और एक तरफ कहीं ना कहीं उन्हें चिंता भी रहती है कि उनके बच्चे सही जगह पहुँचें, सही दिशा की ओर जाएं। तो दिन रात उन्हें ये परेशानी जो है ना, वो परेशान करती ही रहती है, चिंता जो है वो परेशान करती रहती है। खैर, ये परेशानी भी उनके लिए प्यार होती है, और प्यार में कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए, कोई कीमत नहीं लगानी चाहिए। तो ये बच्चों को बात ध्यान में रखनी चाहिए।

दोस्तों, सारी दुनिया मई महीने में, मई महीने के दूसरे रविवार को जो है मदर्स डे सेलिब्रेट करती है। ये तो सभी जानते हैं कि ये दिन खास तौर से सभी माताओं के लिए समर्पित है। वैसे तो माताओं के प्रति प्यार और सम्मान हर पल जो है मन में होता है, लेकिन इस एक दिन उसे जताकर माताओं को खास महसूस कराया जाने का चलन है। इस दिन माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनके अथाह प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया जाता है। जितना खास है ये दिन, उतनी ही रोचक है इस दिन को मनाने की शुरुआत भी। अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने की अलग अलग कहानी है। जी दोस्तों, कुछ विद्वानों का दावा है कि माँ के प्रति सम्मान यानी माँ की पूजा का रिवाज पुराने ग्रीस से आरंभ हुआ है। कहा जाता है कि सेवेले ग्रीक देवताओं की माँ थी, उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। ये दिन त्योहार की तरह मनाने की प्रथा थी एशिया माइनर के आसपास, और साथ ही साथ रोम में भी वसंत के आसपास ईदेस ऑफ मार्च 15 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जाता था। जी दोस्तों, यूरोप और ब्रिटेन में माँ के प्रति सम्मान दर्शाने की कई परंपराएं प्रचलित हैं। उसी के अंतर्गत एक खास रविवार को मातृत्व और माताओं को सम्मानित किया जाता था, जिसे मदरिंग संडे कहा जाता था। मदरिंग संडे फेस्टिवल लिटूर्गिकल कैलेंडर का हिस्सा है। ये कैथोलिक कैलेंडर में लेतारे संडे, लेंट में चौथे रविवार को वर्जिन मेरी और मदर चर्च को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। परंपरा अनुसार इस दिन प्रतीकात्मक उपहार देने तथा माँ का हर काम परिवार के सदस्य द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। अमेरिका में सर्वप्रथम मदर डे प्रोक्लोमोशन जूलिया वार्ड होवे द्वारा मनाया गया था। दोस्तों, मनाना तो सिर्फ एक बहाना है हमारे लिए, क्योंकि साल की ही हम बात करें 365 दिनों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बच्चों ने, जो माँ दिन रात एफर्ट्स करती है अपने बच्चों के लिए, तो एक बार भी उन्हें दिल से शुक्रिया या फिर दिल से उन्हें धन्यवाद किया हो, कुछ प्यार भरे पल उनके साथ बैठ के बिताए हों, क्योंकि माँ तो हर समय उनके साथ बैठ कर खुशी खुशी हर पल को बिताना चाहेंगी, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि अभी तो खैर हर कोई पढ़ा लिखा होता है, लेकिन पहले के समय की हम बात करें ना, तो बच्चे जब पढ़ लिख जाते, क्योंकि माँ बाप खुद तो तंगी में रह लेते हैं, खुद परेशानियों में रह लेते हैं, लेकिन बच्चों को वो हर एक सुविधा देते हैं और कोशिश भी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पहले माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बच्चे पढ़े लिखे होते थे, तो बच्चों को शर्म महसूस होती है जब माँ बाप उनके साथ कहीं बाहर निकले। तो देखिए कितना फर्क है हमारी सोच में, कि जो माँ बाप हमारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर कर देते हैं और हम बस इन चंद शब्दों से उनकी अहमियत कम कर देते हैं।

कि दोस्तों माँ तो हमेशा बच्चों के दिलों में और बच्चे माँ के दिलों में हमेशा हर समय हर पल जो है वो ज़रूर रहते हैं। तो कभी भी माँ को परेशान और दुख तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माँ हर एक तकलीफ़ से गुज़र के बच्चों की खुशी के बारे में सोचती है। दोस्तों धर्मशाला के HPCA स्टेडियम की खूबसूरत वादियों में सोमवार को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों 11 मई को मैच आप सभी इंजॉय करने वाले हैं, जो कि क्रिकेट प्रेमी है जिन्हें स्टेडियम में जाके मस्ती करने का शौक है तो जरूर दोस्तों, एक तरफ फसलों के काम जो है सर चढ़े हैं और एक तरफ इंजॉय भी करना है, तो खैर हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहाने होते हैं अपनी फैमिली के साथ अपने साथ समय बिताने के लिए, तो ज़रूर जाइए इंजॉय कीजिए। जी दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम फिलहाल 10 मैचों में 6 जीत के साथ जो है दूसरे स्थान पर है, वहीं दिल्ली 11 मैचों में केवल 4 जीत के साथ 8वें स्थान पर संघर्ष कर रही है और उसके लिए अब हर मैच करो या मरो जैसा है। वहीं अगर धर्मशाला की पिच की बात करें तो आमतौर पर तेज गेंदबाजों को मदद देती है, खासकर मैच की शुरुआत में। ऊंचाई और तेज आउटफील्ड के कारण यहाँ बड़े स्कोर भी बनते हैं। शाम के समय ओस एक बड़ा फैक्टर हो सकती है जिससे टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। IPL मुकाबलों की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 35 मैचों में पंजाब किंग्स ने 19 और दिल्ली कैपिटल्स ने 16 मैच जीते हैं। जी दोस्तों इस सीजन की पिछली भिड़ंत में पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया था। हालांकि धर्मशाला में ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच हार कर धर्मशाला पहुंची हैं। दिल्ली कैपिटल्स को बीते शुक्रवार को हुए मुकाबले में उनके ही घर पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से बड़ी मात दी थी। जी दोस्तों तो बिल्कुल है ना ये रोमांचक सा मुकाबला और जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए तो बस एक बहाना होना चाहिए और मैच की बस बात चले तो बस फटाफट से स्टेडियम का वही टिकट लेनी है, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो लेनी है तो लेनी है। तो वैसे तो स्टेडियम में जाके ज़्यादातर दंग ही होता है, मस्ती ही होती है, लेकिन ज़रूर करनी भी चाहिए क्योंकि दूर दूर से लोग आए होते हैं और सबके साथ बैठ के एंजॉय करना मस्ती मजाक करना वाह क्या बात है। तो बिल्कुल दोस्तों ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बहाने कभी दोबारा आए ना आए क्या पता, तो ये छोटे छोटे से पल हैं जो ज़िंदगी को और भी खूबसूरत और प्यारा बनाते हैं। तो फिलहाल आप सभी के ज़िंदगी के पलों को खूबसूरत और प्यारा बना रहे हैं इन प्यारे प्यारे से गीत संगीत और ढेर सारी बातों के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz से।

दोस्तों, बहुत से बच्चे अपनी माँ की छोटी छोटी गलतियाँ याद रखते हैं, लेकिन वो हज़ारों अच्छे काम भूल जाते हैं जो माँ ने उनके लिए किए। माँ कोई मशीन नहीं होती, वो भी इंसान होती है। कभी वो थकी होती थी, कभी परेशान होती थी, कभी अंदर से टूटी हुई भी होती थी, लेकिन फिर भी आपके लिए खड़ी रहती थी। हो सकता है उन्होंने आपको बिल्कुल परफेक्ट बचपन ना दिया हो, लेकिन उन्होंने अपने दिल से जितना दे सकते थे उतना सब कुछ दिया। उसने माँ बनना भी धीरे धीरे सीखा और साथ ही ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिनके बारे में आपको शायद कभी पता भी ना चला। आज आप बड़े होकर उनकी गलतियाँ देख रहे हैं, लेकिन एक दिन समझ आएगा कि उन्होंने अपने हिस्से की कितनी खुशियाँ छोड़ दी ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। इसलिए जब तक माँ साथ है, उनसे प्यार करें, उनकी इज्जत करें, उनके पास बैठें और उन्हें महसूस कराएं कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती।

दोस्तों, माँ की एक दुआ जिंदगी बना देती है, उसकी एक मुस्कान हर गम भुला देती है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी माँ अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ती। उसका दिल समंदर से भी गहरा और प्यार जन्नत से भी खूबसूरत होता है। आज का दिन उन सभी माँओं के नाम जो बिना किसी मतलब के सिर्फ प्यार करती हैं, बदले में कुछ नहीं मांगती। हर रिश्ता स्वार्थ के लिए बनाया जाता है, हर कहीं अपना मतलब देखा जाता है, लेकिन माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कोई कीमत तो नहीं है, या तो ना ही हम लगा सकते हैं। अनमोल सा रिश्ता है और ना ही कुछ मांगा जाता है। तो इस तरह का ये रिश्ता हुआ ना हमारे लिए कितना

291 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो खुशी से मनाइए, एंजॉय कीजिए और स्पेशल फील कराइए अपनी माँ को इस दिन की अहमियत के साथ। जी दोस्तों, तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रोलर में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091710। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज के इस एपिसोड को लेकर के मैं बड़ी एक्साइटेड हूं, क्योंकि काफी मेहनत करके मैंने ये कुछ गाने जो हैं वो आपके लिए ढूंढे हैं। क्यों मेहनत लगी? क्योंकि इतने सारे बेहतरीन गाने हैं कि कुछ गाने ढूंढ पाना सच में काफी मेहनत वाला काम था। आखिर ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके इतने सारे अच्छे गाने हैं? भाई मैं बताती हूँ, आज जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो म्यूजिक की दुनिया के दो जिस्म एक जान है। जब ये दोनों मिल जाए तो गाने तो हिट होने ही हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडियन सिनेमा के एवरग्रीन म्यूजिकल डुओ आर डी बर्मन और किशोर दा की। इस जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक क्लासिक हिट्स दिए। एक साथ इन दोनों ने 165 मूवीज की हैं। लेकिन इस सबकी शुरुआत कैसे हुई थी? बर्मन दा और किशोर दा की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ऐसे थे हमारे आरडी बर्मन और किशोरदा की दोस्ती, जैसे मानो इन दोनों को किसी लड़की की जरूरत नहीं थी। एक दूसरे से ही प्यार किया करते थे, एक दूसरे के ही साथ में दिन और रात बिता लिया करते थे। आपको पता है इनकी दोस्ती कैसे हुई थी? हुआ कुछ यूं कि एक दिन बर्मन साहब कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, एक फिल्म के किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए एक स्टूडियो में गए थे। उसी स्टूडियो की दीवार के ऊपर बैठ करके, यानी कि एंट्रेंस पे जो गेट के पास की दीवार होती है, उसके ऊपर बैठ करके एक आदमी हर एक इंसान को इमिटेट कर रहा था। जो भी वहां से गुजर रहा था उनकी नकल उतारे जा रहा था। बर्मन साहब अंदर ही जा रहे थे और वो आदमी दीवार से कूद कर स्टूडियो में जा पहुंचे। जो जो गाना गा रहे थे बर्मन दा, उसका सत्यानाश करके वो खुद उस गाने को गाने लगे। जब बर्मन साहब ने पूछा कि कौन है ये आदमी, तब कहा किशोर दा ने कि मैं अनाथ हूँ, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, प्लीज एक चांस दे दो, मुझसे भी एक गाना गवा लो। आरडी बर्मन साहब ये सुनने के बाद दिल खोल के हंसे कि वो दीवार वाला जो आदमी है वो और कोई नहीं बल्कि अशोक कुमार जी का छोटा बेटा किशोर कुमार है। और बस वहीं से हमारे बर्मन साहब और किशोर दा की ये जो दोस्ती की शुरुआत हुई, वो पूरी जिंदगी चलती चली गई। बर्मन साहब ने ये हमेशा माना कि किशोर दा वॉज द बेस्ट सिंगर बॉलीवुड एवर हैड। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ बर्मन दा और किशोर दा की ही नहीं थी, इसमें एक तीसरा इंसान भी था। कौन था इनके ग्रुप का वो तीसरा इंसान, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। तकदीर लिखने वाले एक एहसान करते, मेरे दोस्त की तकदीर में एक और मुस्कान लिखते। ना मिले कभी दर्द उनको, तू चाहे तो उसकी कीमत में मेरी जान लिखते। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जोड़ी के बारे में जो कि एक दूसरे के नाम अपनी जान कर सकते थे, यानी कि आर डी बर्मन जी और किशोर कुमार। जैसा मैं कह रही थी कि इन दोनों की दोस्ती के तो चर्चे आज तक भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे, बल्कि इनकी शरारतों में, इनके गानों में एक और शख्स भी हमेशा हुआ करते थे हिस्सेदार, और वो कोई और नहीं बल्कि आशा भोसले जी थी। आशा भोसले जी जो कि किशोर दा की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। किशोर दा खुद कहा करते थे कि आशा भोसले जी से ज्यादा अच्छा दोस्त कभी उन्हें मिला नहीं, और आशा भोसले जी जो कि बर्मन साहब की पत्नी हुआ करती थी, तो इन तीनों का मानो एक ग्रुप सा बन गया था। हर जगह जाकर के, हर फिल्म मेकर से जाकर के ये तीनों साथ में मिला करते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब लता जी ने खुद आर डी बर्मन जी को कहा था कि तुम तीनों की कुछ ऐसी मिली भगत सी हो गई है कि तुम मुझे तो भूल ही गए हो। उस पर किशोर दा ने कहा था कि मुझे आपसे डर लगता है दीदी, इसलिए आपके साथ में मुझे काम करना पसंद नहीं है। लता जी को ये बात थोड़ी सी खटकी जरूर होगी, लेकिन ये जानते हुए कि किशोर दा तो जो मन में आता है वो कहते हैं, पर मजाक में कहते हैं, कुछ मीन नहीं करते हैं, यही मानते हुए शायद लता जी ने इस बात को जाने दिया होगा। तो चलिए, इतनी बात हो ही गई है इनकी दोस्ती की, तो सुनाते हैं आपको अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर सेलिब्रेटिंग किशोर दा और बर्मन साहब।

0: करता है।
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आर डी बर्मन और किशोर कुमार को साथ में। बताइए, ये दोनों शख्स अलग अलग ही इतने ज़्यादा बड़े म्यूजिशियंस एंड कंपोजर्स और सिंगर रहे हैं, तो इनको साथ में मिल करके यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं, तो आज का एपिसोड तो बड़ा कमाल है। यहाँ पर बर्मन साहब के बारे में, वंशम दा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से म्यूज़िक बनाना इन्हें बहुत पसंद था। चाहे वो खाली ग्लास हो, खाली बोतल हो, चम्मच से निकाली हुई आवाज़ हो, दांत के किटकिटाने की आवाज़ हो, रेत के गिरने की आवाज़ हो, या फिर सिर्फ बांस की एक लकड़ी से निकाली हुई आवाज़ हो, किसी भी चीज़ से म्यूज़िक बनाना तो कोई पंचम दा से सीखे। लेकिन क्या आपको पता है कि पंचम दा ने एक बार एक तोहफा दिया था किशोर दा को, और उस तोहफे के कारण इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बनाया था। बैठ करके एक महफिल जम गई थी। ये तोहफा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये तोहफा एक एक्सपीरियंस था। क्या था ये तोहफा और कैसे इस तोहफे के कारण इन दोनों ने मिलकर के एक फिल्म का म्यूजिक दे दिया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: ओ दिलरुबा।
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले मैं बात कर रही थी यहाँ पर एक तोहफे के बारे में जो कि पंचम दा ने किशोर दा को दिया था। क्या हुआ, एक बार यूं ही खुश होकर के पंचम दा ने एक बेली डांस शो अरेंज किया था एक्सक्लूसिवली किशोर दा के लिए, सिर्फ और सिर्फ किशोर दा देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। पेमेंट भी हो गए थे लेकिन किसी कारण से डांसर्स आए ही नहीं। और इसका भी फायदा हुआ क्योंकि बर्मन साहब और किशोर दा साथ में बैठे हो, करने को कुछ ना हो और अच्छा म्यूजिक ना बने, ऐसा हो सकता था क्या? बेली डांसर्स आए नहीं, शो हुआ नहीं और हमारे पंचम दा और किशोर दा ने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया और यूं ही बैठे बिठाए फिल्म रोमांस का म्यूजिक इन दोनों ने बना लिया था। बताइए, यूं ही ऐसे ही एक शाम को बैठे हुए अगर गाने बन जाए तो इनसे ज्यादा बेहतर और कोई सी जोड़ी हो सकती थी क्या? बर्मन साहब यानी कि हमारे पंचम दा और किशोर दा की इसी दोस्ती के नाम अगला गाना सुनाएंगे आपको और यही कहूंगी मैं इन दोनों के नाम के कुछ रिश्ते वक्त की तरह होते हैं, बीत तो जाते हैं लेकिन याद बनकर रह जाते हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

कैसा लगा आपको ये एपिसोड? चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री

मंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091710917091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जा करके लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरा गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

0: चल मेरे घर चल।
1: श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत, मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
4: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
6: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
7: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

0: कानू दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला कने मैं शशि तुहां तक जेड़ा कार्यक्रम है माटी दी महक कार्यक्रम तुहां तक प्रस्तुत जेड़ा इसे करी थे कने तुहां सारे भी इस माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर करने जरूर जेड़ा इसे जुड़ी होने न तो सारे जो इंतजार रहेंदे कि कालू दिया दो बजते न कने कालू दिया हाँ इस माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न ता श्रोताओं आज का जेड़ा दिन है से बेहतर खास है खास तो बनते है ना जिंदगी का हर दिन खास होंदा पर कुछ ही दिन जेड़ा होंदे से अहां वास्ते बड़े ही खास जेड़ा अहां बोली सकते कि अहां वास्ते होंदे ता 10 मई 2026 दी अहां गल करिए ता आज का जेड़ा दिन है से तुहां सारे जो ही पता है कि कयो अहां वास्ते खास है कने कयो अहां वास्ते बेहतर है थोड़ा जिहा सस्पेंस जेड़ा है से तुहां च रखदे न कने पहले जेड़ा श्रोता न तिना कने करदे न गल बात। हैलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी मैडम जी, ठीक है
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दी कने तुहां दा नां की है जी?
1: मैं सिद्धवाड़ी च बोला दा
0: जी। सिद्धवाड़ी ते कौन बोला दी जी?
1: मेरा नाम अशोक कुमार है जी।
0: जी अशोक जी, क्या काम कार तुहां लगाया, क्या करा दे आज?
1: मैडम मिस्त्रियां काम है
0: जी, मिस्त्रियां दा काम है
1: जी।
0: ता अशोक जी, कदे लगदा तुहां जो ये कार्यक्रम रोज ही सुनदे तुहां?
1: हां जी मैडम, रोज सुनदे हां जी।
0: जी ता आज हां कुछ खास दिन बना देना, अगर तुहां रेडियो गुंजन दे कार्यक्रम सुना देंगे तो तुहां जो जरूर पता लगी होना कि कुन दिया खास। जी अच्छा, वो नहीं किता तुहां जी। आज हां बना दिन मदर डे, अहां वास्ते मां दा प्यार कने मां दा मान सम्मान करना कितना ज्यादा जरूरी है ना जी?
1: नहीं, मां दा कभी भी नहीं भूल सकते
0: जी। जी कभी भी नहीं, जेड़ा से यहां मां दा प्यार जी जी, मां दा जेड़ा लाड है ना उस जो हां कभी भी नहीं भूल सकते ना जी।
1: जी
0: ता मैं तो यही दुआ करना चाहती कि कोई भी है उन्हें दी माँ हमेशा सलामत रहें, पर जिंदगी दा जिड़ा दूर रहना से पता नहीं होंदा ना जी कि कालू क्या हो जाता है ना जी। जी जी ता अशोक जी, तो हाँ क्या माँ वास्ते बोलना चाहेंगे कि माँ दा प्यार कितना हाँ वास्ते जरूरी है, माँ दा लाड जी? जी माँ दा प्यार ऐसे है कि पहले अपने बच्चे जो खवांदी फिर ही बाद विच अपना जेड़ा पेट ऐसे भरती ना जी।
1: जी जी वैसे भुखी जाने की से माँ
0: जी जी जी। ता अशोक जी, आज तो हम कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी?
1: जिंदगी सोनी है
0: जी। अच्छा गीत तो हम सुनने है जिंदगी सोनी है, जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। धन्यवाद जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तां श्रोताओं, मां दा शब्द बल्कि एहसास है हां वास्ते, से अहां वास्ते हर काम करदी है, चाहे से अहां दी परवरिश करदी है, किस प्रकार अहां दी परवरिश करदी है, से माँ अहां दी बड़े अच्छे तरीके ने जानदी है। माँ दा प्यार भगवान ते भी बड़ा है, तो माँ दी कदर करना भी अहां वास्ते जरूरी है। पहले अपने कार्यक्रम दी शुरुआत अहां कर दे न इस प्यारे दे गीत कन्ने, जिंदगी सोनी है।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा देया गीत जिंदगी सोनी है आंधे जेड़ा पहले श्रोता हाँ कने जुड़े थे तिना तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया अगले जेड़ा श्रोता ने तिना कने भी कर दे ना गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: मैडम जी? वधिया वधिया, पर पता क्या है मैं बड़े गल्ले तुम्हारे कांटेक्ट नहीं कर रहा कि मैं चली गया बाहर
0: जी। जी
1: मैं रेडियो गुंजन बड़ा लाइक करता।
0: जी जी
1: अच्छा, आजकल मैडम जी मैं एक गल पूछनी है कि सारे जो पैसे ने पीछे करते हो
0: जी? क्या बोला दे तो हुंदी आवाज थोड़ी कटी कटी के ओ दी जी।
1: अच्छा जी कटी गिरी होगी
0: जी।
1: अच्छा मैं बोल रहा मैडम जी कुटिया जो प्यार करने दिया मोहब्बत करने दी उन्होंने सारे जड़ा स्पेशल के पीछे लगी थी हो
0: जी। जी
1: हाँ जी
0: जी, तो हुंदी आवाज बिल्कुल ही कटी कटी के ओ दी जी। तो हाँ अपना नाम दसी दिया कने कुहा जगह दे रहने वाले ने सभी जरूर दसी दिया जी।
1: मैडम जी कोई पहाड़ी गीत सुनाई जी?
0: जी जरूर जी। ता अगले जेड़ा श्रोता ने सियाह कने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कने गल बात। हेलो
2: हेलो नमस्ते सती जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: हां जी ठीक ठाक है, तुम बोला
0: जी? यहां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथू ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी?
2: मैं तुम रोड के ते बोला रतना रमेश मेरा नाम है तने कभी कभी पिछाई नहीं लिया करा
0: जी। रमेश जी तो हाँ बड़े दिन बाद रेडियो गुंजन धर्मशाला जो याद कर दे, पर कई बार होंदा ना कि पहचान दे यांदी आवाज दे थ्रू ही ना जी।
2: कन खलो गेना बाद ना तो मैं गाना लो जब सा पता भी उन याद पर ये मारे तो फोन कालू करने
0: जी जी। रमेश जी आज कड़ा मौसम कदे है तंगलोटिया दा?
2: ते बदलाव खादी आया
0: जी। अच्छा बदलोखा ही है जरूर सुनी ली होनी है अगर तुहां रेडियो शुरू ते सुना दे होंगे ना जी।
2: हां जी हां जी
0: जी, ता सुनी लिया तो हम मेरी गल बात?
2: मैं ना तो प्रोग्राम में जाके पी योगी आके ना उड़ी है कर ना उड़ी रेडियो लाया
0: जी। अच्छा प्रोग्राम में के है फ्री रेडियो सेट ऑन करी था तो हां?
2: हां जी हां जी
0: जी। ता आज यहां बना दिन मदर्स डे ना जी?
2: हां जी।
0: मां दी यहां दे जीवन च कितनी अहम भूमिका है ना जी? जी तो तुम्हें क्या लगता माँ दा एक शब्द यहाँ वास्ते जन्नत तक पहुँचाइंदा ना जी?
2: मैं बोलता जी पूछा मतलब माँ ने तो मतलब कर्जा नहीं दे सकते आदमी।
0: जी जी जी, माँ बिना ता जी
2: सोचने की गल ना, कोई तो सोचा था ना ये कर्जा नहीं मुक्की सकता।
0: जी जी जी, ता रमेश जी आज तू हाँ कुंतिया गीत सुनना पसंद करके
2: आज गाना सुनाएगा जी ताई दो गुजरियां दूध बेचन आईया।
0: जी अच्छा, दो गुजरियां दूध बेचन आईया।
2: हां जी
0: जी जरूर, तुहंदी फरमाइश तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगली श्रोता भी बिल्कुल अहां कन्ने कनेक्ट अन कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
3: हेलो नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है?
3: हां कल बड़े बिजी हो जा रहे हां, तो बिजी होई हो फसला टाइम में तो हां भी बिजी हो जा रहे
0: जी जी, तो होई है बेले तुहां कणका ते?
3: हां जी हां जी, कणक तो गाई छड़ी हां, पर नेड़ बड़े सीता ना नाली
0: जी। अच्छा अखे बखे है जी जी, मौसम भी बड़ा डरा दा ना जी?
3: हां मौसम डरा दा, राती का बड़ा ही डरा रहा है
0: जी जी।
3: आज बदोखी दे तो निकल जाए पर पता नहीं है कोई इसका
0: जी। मौसम दा
3: आज कोई... ना कल तो बरखा दसी हो ना
0: जी? आज ता इतनी नहीं दसी हो पर कल ता दसी हो है ना जी?
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी ता
3: ट्रैक्टर भी जोरे लग गया था, ये भी जोरे डरा ना लोग कहीं।
0: जी जी चलो समय के अनुसार अगर फ्री हो यान तो अच्छी गल है।
3: डरना पड़ता ना, साले की कमाई है ना, डरना
0: जी
3: पड़ता।
0: जी साले की कमाई
3: ने?
0: एक बारी मिलनी ना जी।
3: हाँ जी हाँ जी कहाँ था डरना पड़ता कहाँ था तोड़ लगी है लोग कहीं।
0: जी जी
3: है ना
0: जी और नहीं था जी तपोबंदी
3: बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास तपोवन दे आ था ठीक है ना बस वहां धर्मशाला दे सुना ते सुबह कणका बड़ी हरिया लोग का।
0: जी जी धर्मशाला दे हाल चाल भी ठीक है जी।
3: अच्छा मैं बड़ा कणका बड़ी थी लोग का नहीं बढ़िया
0: जी ता धर्मशाला च प्रॉपर नहीं पोंदा है स्थित बाड़ी च पोंदा ना जी रेडियो गुंजन।
3: हां जी हां जी हां
0: जी
3: जी
0: ता तपोवन ते थोड़ा ही नजदीक है ना जी ता इतों तक ले के ही होने ना जी।
3: लगे अल्ले
0: जी जी जी तो आज तो हो कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
3: आज हाँ गीत सुनना आ रहे हो जाना बंडेरा पार।
0: जी अच्छा जाना बंडेरा पार सुनने तो हाँ गीत।
3: हाँ जी हाँ जी
0: जी जरूर ये गीत तो तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते
3: बड़ा बड़ा धन्यवाद
0: जी तो हाँ भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ताशु तो माँ दी यहाँ जिड़ा गल है से करा दे पर अगले जिड़ा श्रोता है ना सभी जरूर अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने भी गल बात। हेलो
4: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
4: नमस्ते जी नमस्ते शशि जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
4: बढ़िया जी बढ़िया
0: जी। क्या काम कार तुहां लगाया क्या करा दे आज।
4: आज बेले है
0: जी आज बेले कोई काम कार नहीं आज थोड़ा दिया शरीर जो रेस्ट दे देना जी।
4: सवेरे वो रेस्ट कुटू दिया दे लसन पट्टी चंदा हूं मैं।
0: जी अच्छा लसन पट्टी लिया तुहां
4: लसन पुटे जंदा बीन पुटे जंदा।
0: जी ता बीन नहीं पुटे हाली तो हाँ
4: नहीं पुटे हाँ।
0: जी जी ता बीने पुटने थोड़ा देर लेट हो ये कि इस टाइम ही पुट दे
4: ये टाइम बद ही हुंदा।
0: जी अच्छा अपना अपना समय दिखी करी चल देना जी सारी।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी जी ता और नोई ताजी चैतड़ुए दी
4: बस बढ़िया लगी है तो पंगना।
0: जी ता
4: कल कल मैच आ गया था कल बरखा ना हुआ।
0: जी कल तो बरखा दसी हुए कने जेड़ा क्रिकेटर प्रेमी अंतिना दे दिले च धड़कन शुरू होई होनी है कि बरखा ना हुआ ना जी। बरखा तो
4: वैसे होंदी कना।
0: जी जी होंदी होंदी वैसे तो दसी हुआ है ना जी।
4: हाँ जी
0: जी जी ता मंगल जी आज हाँ जेड़ा गल बात करा देन से तुहां जरूर सुनी ली होनी है या नहीं सुनियो ता अहां तुहां
4: नहीं सुनी है मैं होनी कित्ता हो ना।
0: जी जी तो आज यहाँ जेड़ा स्पेशल दिन बना देन से यहाँ मदर्स डे यानी कि अपनी माँ जो ये दिवस जेड़ा है से यहाँ समर्पित करा देन ना जी।
4: अच्छा
0: जी कि यहाँ दे जीवन च माँ जेड़ा है से कितनी अहम भूमिका अदा कर दी है ना जी।
4: हाँ जी
0: जी ता तो है क्या लगता माँ जेड़ा है से शब्द वैसे तो छोटा दे है पर हर रिश्ता आंदा जेड़ा है से माँ कने जुड़ी आंदा है ना जी।
4: जुड़ी ता जांदा जी
0: जी जी तो माँ बिना ता जी
4: माँ बिना पुत्र नहीं है
0: जी
4: पुत्र बिना माँ नहीं,
0: मा नहीं है पर माँ ता हर ख्वाहिश अपने बच्चों दी पूरी करती ना जी चाहे से कुछ भी है चाहे छोटा बच्चा है छोटे बच्चे दी इस कदर सेवा कर दी कि उस जो जरा की चोट ना लगी है ना जी। अगर बच्चे जो चोट लगती है तो दर्द माँ जो होंदा है ना जी। पर
4: मैडम मैं इकल
0: जी
4: इकल बोला
0: जी जी
4: एक माँ का ना बाबा ना
0: जी
4: ये इन्हें पता भी मारा मुंडो दारू दूर पींदा या कोई भी नशा करता ना
0: जी
4: माँ अपना पर्दे छुपाई के रख दी
0: जी
4: ये मेरा मुंडो चल पे कोई गल नहीं
0: जी
4: एक मतलब उन क्या गल लगे लगे गल मैं मतलब मुझे अखन सोचता
0: जी जी
4: तो मेरे माँ बाप खत्म हो गए
0: जी
4: पाप रोजी ना
0: जी जी
4: एक तो माँ बाप है ना कने का भाव भरोजी मतलब भाव भी मतलब कुआरे होंगे ना
0: जी जी
4: तालो तक अपने का ना
0: जी सही है ना कि हर कुसी दा सोच विचार सही है कि अलग अलग होंदा ना जी अगर हाँ
4: एक,
0: जी
4: एक माँ वही तो माँ ना
0: जी
4: कने का अपनी जनास है
0: जी
4: तो सह मतलब पता क्या बोल दे
0: जी
4: ये सही सिंह है मतलब दारू पी के भी है ना
0: जी
4: तो सह मतलब पढ़ दे पानी की गल कर दे
0: जी
4: करना जे जेड़ा और होंगे ना सह मतलब यही कर दे भी ये था दारू पी के है जे रात याद नहीं पे रही होता उसके नगला जाना पेगा जी
0: जी चलो ठीक है कि माँ दा प्यार कने पत्नी दा प्यार कने पिता दा प्यार जैसे सबसे बड़ा होंदा ना जी पर कुथी ना कुथी अगर माँ अपने बच्चे जो अच्छे संस्कार दिंदे न अच्छी परवरिश दिंदी है ना जी तो बच्चे दा जीवन सफल हो जांदा ना जी पर कुथी ना कुथी
4: एक गल लगे मंगलाना तो जो
0: जी
4: एक माँ होंदी ना
0: जी
4: मतलब हूं तो चलो एक लड़का लड़की होते ठीक है
0: जी
4: पहले टाइम में चार कना पांच पांच कना छे छे बच्चे भी होंगे
0: जी जी
4: तालू अपना सह मां बड़े संभाल लेंगे
0: जी पर इस टाइम ता अजकने दौर दी हां गल करिए ता कुथी ना कुथी ये चीज दिखने जो बड़ी कम मिला दी ना जी
4: नहीं ना मतलब जे मां को के गलत बोली भी देंगी ना
0: जी जी जी ये ता बिल्कुल सही बोला दे आजकने दौर दी ये सच्चाई है इस जो कोई भी नहीं झुठलाई सकता ना जी पर
4: थोड़ा
0: जी
4: जिन्ना मोज जन्म देते ना
0: जी जी
4: पिता की भी प्यारी है पुत्र भी हरा जी
0: जी
4: जे मेरी का सुनना है जी है ये ठीक है ये पुत्र ये भी दिंगी ना जन्म आयो
0: जी
4: ते सही है नम्मा ते परोखा दिया दी
0: जी
4: पुत्र ये पता होना बे
0: जी जी
4: तो नम्मा ना निकलाना था भाई कुदरा भी निकलाना का ना जब आपसे नम्मा ना गलाया नहीं ना तो लड़ाई पे ही नहीं
0: जी जी चलो हर कुसी दी अपने अपने सोच विचार होंदे ना जी जी तो आज तो
4: सारे ता इको दे होंदे नहीं पर
0: जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके जी
4: उन्हों को गाना कौन दे सुनना है गाना कौन दे सुनना जी पाड़िये से बोलिया मेरा खेलन मा
0: जी जी जरूर
4: तुम्हारा मनु है ना
0: जी जी
4: मेरा
0: जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुंचा दी
4: जी अमर कमाल जी बोला था जी
0: जी ए है तो हां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला तो हां सारे कार्यक्रम सुना दे ना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो हां सारे भी माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर चाह कन्ने जुड़ी सकदे ताशो तो कुछ गल्लां जेड़ां से हां दे दिल तक छुई आनियां न क्योंकि माँ दा जालू अहां जिक्र कर देना तो माँ अहां वास्ते ए है कि माँ दी कदर करना भी अहां वास्ते जरूरी है बच्चे दी हर ख्वाहिश पूरी जेड़ा से माता पिता कर देन माँ दी जेड़ा था है ना से कोई भी नहीं ले सकदा माँ दे बिना जिंदगी जड़े से बिल्कुल अधूरी है तो माँ दी कदर करा माँ जो हमेशा मान सम्मान जड़े से जरूर दिया क्योंकि मान सम्मान देना बच्चों की जिम्मेदारी है उन्हों दा जालू बच्चे बड़े हो जाते न कने माँ बाप जड़न से बुढ़ापे चाहते न तो कुथी ना कुथी बच्चे भी अपने माता पिता का जड़ा साथ है से जरूर छड़ी दे न तो थोड़ा दिया सोच विचार करने की जरूरत है अगर तुहां ध्याने ने सोच देन तल ती कहां चल देन गीत दी ओर क्योंकि अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तुहां तक पहुंचानी है तुहां सारी इस प्यारी दी फरमाइश है जो जरूर इंजॉय करा।

0: श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ही प्यारा दया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुंची हुए व्हाट्सएप दे थ्रू। तिना दा ना वे चरणदास जी कने से रहने वाले न खनियारा ते तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तुम सुना जी।
0: जी यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुह कुछ ते बोला दे कने अपना जेड़ा नाम है सभी जरूर दसी दिया जी।
1: हाँ तपोवन से बोला दे
0: जी।
1: सेतोराम
0: जी, तपोवन से बोला दे सेतोराम।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, क्या काम कार तुहान लगाया, क्या करा दे आज?
1: कम कार पहले जी कणक गाई कने आज भू बार रखे कने हूं बैठे बैठे
0: जी। अच्छा कणक गाई करी हुई है फ्री तुहान?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। चलो पहले
1: तो सेड़ी दी थी ना
0: जी। अच्छा सीजी ही तो होंदी जी।
1: हाँ बढ़िया नहीं है अपन पे खड़ोती है, खड़ोती है सीजी है ना
0: जी। चलो खड़ोती है दा कोई इतना फर्क नहीं पौंदा, पर जालू वहां ते है जो बड़ी इंदे न कने ता अगर बरखा होइया तो थोड़ा दिया ज्यादा काम पे जांदा ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी जी। और नोई ताजी?
1: बस नौ ताजी बढ़िया जी। वासना
0: आज अहां जेड़ा खास गल करा देन से अहां करा देन मदर डे पर माँ दिवस जेड़े से आज अहां बना देन तो तुहें क्या लगदा माँ दी अहां दी जिंदगी च कितनी अहम भूमिका है?
1: माँ जी तो हमें तो क्या जी, माँ माता पिता के बिना तो कोई जीवन ही नहीं है साड़ा
0: जी।
1: देखिए माता पिता ने तो कर्ज तो हाँ इस जन्म च तार ही नहीं सकते जी।
0: जी बिल्कुल
1: जी। देखिए जिना जिना साड़े बस इतना संघर्ष कितने होंगे, इतने बच्चे छोटा थे एक दिन ते पाले होंगे
0: जी जी।
1: आपू से गिली जगह से सौंदे के सांझे सुखी है सौंदे ना
0: जी जी। आपू से खाना खांदे न कने आपू खाना मतलब नहीं खांदे न कने बच्चे जो पहले खिलांदे न।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी।
1: माता पिता का
0: जी जी
1: साढ़े तो माता पिता नहीं रहे ना अपन हाँ ही होना आज और नहीं पे चल हाँ तो ये बोलना चाहते कि जिन्हें माता पिता ना अपने माता पिता ने सेवा करा दवाई करी
0: जी। कने बच्चे जो कि आप प्रेरणा देना चाहेंगे तो हाँ क्योंकि आज कने दौर दी हाँ गाल करिए तो कुछ ना कुछ ही जेड़ा प्यार है ना से हर कुसी च फिक्का दिखने जो मिला था ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो हाँ क्या जी
1: बच्चे तो ये है ना कि जेड़ा बच्चे हूं जेड़ा एक तो नशाखोरी से चला दे ना ज्यादा की
0: जी जी
1: शायद अपने माता पिता यानी कि कोई चला दे नहीं कोई
0: जी जी। सही बोलिया तो हाँ चलो ये भी सही गाल है कि नशे दी और जाना घरे दी बर्बादी है या अपने माता पिता दा मान अपमान करना है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। ता नशे दा छड़ा नशे दा जेड़ा खुमार है उस जो साइड करा कने माता पिता दा जेड़ा प्यार है उस जो अपनाना शुरू करा ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: उना दे एक बारी उना दी तरफ झांकी करी दिखा कि स्याहा वास्ते किस प्रकार मेहनत करा देना, किस प्रकार आहा वास्ते संघर्ष करा देना, चाहे धूप है तो धूप च लगियो चाहे कुछ भी है फिर भी अपने बच्चा वास्ते जेड़ा है से माता पिता संघर्ष करा देना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो थोड़ा देर सोच विचार करने की जरूरत है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी,
1: क्योंकि माता पिता का था इतनी सेवा करना चाहिए कि जितनी तक भगवान दी पे ज्यादा पहले नंबर पे भगवान से ज्यादा माता पिता नहीं
0: जी। यहाँ भगवान जो ज्यादा मन देन मंदिर जान देन ठीक है, मंदिर जाना भी यहाँ वास्ते जरूरी है, पर अगर तो हाँ अपने माता पिता दी ही सेवा नहीं की तो भगवान दे अंदर जाई करी या झुकी करी तिसका कोई फायदा नहीं है ना जी।
1: नहीं कोई फायदा नहीं जी
0: जी।
1: माता पिता पानी वास्ते टटका दे कर है ना आपको सेवा करा रहे बाहर जाएंगे ताकि
0: जी से तो बिल्कुल ही गलत है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। तो आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
1: आज कोई बाबे जी बेटा सुना दिया जोड़ से जी।
0: जी जी जरूर बाबा बालकनाथ जी दा भजन तो हाँ तक पहुँचा दें चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तो हाँ दा
1: धन्यवाद जी थोड़ा जी मते दिन बाद फोन किया था
0: जी जी
1: जी। चलो ठीक है
0: जी। ताइशो तो तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने कन्या जहाँ जेड़ा गल बात करा देना से तुहा सारे जो ही पता है कि आज हाँ जेड़ा खास दिन बना देना मदर्स डे जड़े से आज हाँ बना देना कने माँ सिर्फ हाँ वास्ते एक शब्द नहीं है बल्कि पूरी जड़ा कायनात है से हाँ वास्ते है। माँ जड़े से पहली यहाँ दी गुरु है, पहली यहाँ दी सहेली है, कने सबसे बड़ी यहाँ दी जड़ा रक्षक है। माँ ही यहाँ जो सही गलत दी राह जड़े से दिन दी है। माँ दी थोड़ी देर डांट अगर अहाँ खाई लेंदे न तो कुछ फर्क नहीं पौंदा है क्योंकि माँ दी डांट भी प्यार दे बराबर होंदी। जिन्ना रोटिया कन्ने अगर देसी घी लगी आंदा है तो उसका स्वाद जड़ा है से बड़ा प्यारा लगता है। तो तिन्ना ही माँ दी जड़ा डांट है ना सभी यहाँ वास्ते कुछ खास है। तो अगले जड़ा श्रोता है ना तिना कन्ने भी करनी है यहाँ गलबात से कुथू ते बोला देन कने तिना दा ना क्या है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते शशि जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: जी? हां जी ठीक ठाक। तुसे सुना
0: जी? हां बिल्कुल ठीक ठाक है जी। क्या काम काल लग गया तुहां? क्या करा दे?
1: बस खाना खुना खाई के वेले होए न होना कन्ने गाना सुन रहे थोड़ा रेडियो
0: जी। अच्छा तुहां सोचा कि हुन थोड़ा दिया रेडियो दी और हां अपनी नजर लगा दे ना।
1: हां जी।
0: रीना जी क्या
1: नोई ताजी खनियारे दी? नोई ताजी

0: प्राणी है। हाँ
1: जी सारी ना प्राणी ही है ना।
0: जी हाँ
1: मौसम के दिया है
0: जी, मौसम ठीक ही है, बदल गया थोड़ा पर धूप भी लगी है, ठीक है मौसम।
1: जी, मतलब कुछ अजीब दिया ही है मौसम
0: हाँ जी,
1: जी,
0: ना
1: पूरा
0: ज्यादा धूप बोली सकते ना बदल बोली सकते।
1: जी, ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा बदल है ना।
0: हाँ जी,
1: जी, तरीना जी, तो हाँ क्या माँ वास्ते बोलना चाहेंगे?
0: शशि जी माँ का कर्जा तो कभी दे ही नहीं सकते ना जिंदगी च। माँ का सब ना ये जगह मिली है, एक माँ की जगह माँ प्यो इसका मजा नहीं नहीं रहते। माँ प्यो तो आप पता लगता है माँ क्या होती है ना,
1: जी
0: जिन्हें
1: जी
0: देनी है ना।
1: जी
0: माँ तो मैं बोलती इतना आदर सम्मान करा कि जे माँ जी का ये पूजा माँ बेचारी की कि बच्चे पालती है अपू नहीं खाती पहले की जे बच्चे जे कभी खाती है।
1: जी
0: माँ का कर्जा तो कभी ले ही नहीं सकते शशि जी,
1: जी जी बिल्कुल जी
0: माँ से बड़ा
1: बिल्कुल
0: तो कोई नाता नहीं है। हाँ
1: जी, माँ
0: जी
1: दी कदर हमेशा करा, माँ दा सम्मान हमेशा करा। हाँ
0: कई
1: मैं
0: बच्चे
1: बस
0: नहीं करते ना, कई बच्चे नहीं समझते जेड़ा शहरी होंगे ना कि कितने शहरी ज्यादा माँ भी याद होती कि जल्द नहीं रहते जल्द ना माँ पे तो आऊंगी माँ प्यो भी याद कि क्या
1: जी,
0: बाकी
1: ता उस
0: कल
1: याद का क्या फायदा, जालू जीते जी तो
0: लू
1: हंदा
0: कल कोई
1: सा।
0: फायदा नहीं रहना।
1: जी, जीते जी
0: हाँ
1: एंता
0: जी कल
1: तालू कदर करा ना उना दी, समझा
0: लू
1: उना
0: नहीं
1: दी।
0: करनी कदर ना कल तो माँ प्यो भी दिखे नहीं पिछले पिछले दिए कुछ
1: जी
0: कुछ माँ जो मारी रहा कोई किए देना
1: जी
0: किए पाले होंगे बच्चे माँ प्यो बेचारे क्या क्या
1: जी
0: सपने होंगे माँ प्यो दे
1: जी
0: पहले सब बच्चे बड़े पाल पोखी सब माँ जिनकी बच्चे माँ मारी थी बड़ी थे प्यो बड़ी था
1: जी
0: मेरे बच्चे का लाड़ मैं बोलती इसके साथ ना हो ता खर ये करने
1: जी जी ता माँ ता चिड़ाई से, हाँ जो हमेशा मान सम्मान चिड़ाई से करना चाहिए था ना जी।
0: करना चाहिए जी। हाँ
1: जी
0: जी हाँ
1: तरीना जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी।
0: जी ये सुना पाल वो को आई है कैंसिल ये जा रही है।
1: जी जरूर है गीत तो हाँ तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा।
0: धन्यवाद जी।
1: जी तशो तो जल्द ही ना फरमाइश दी और

श्रोताओं तुम सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई वह तंगलोटिया ते कनतीना दा नाम है रमेश जी। रमेश जी तक हाँ ये गीत पहुँचे या कने फिर ते हाँ अपनी वापिस जड़ा गल बात है तिहा पर उन्दे न माँ एक शब्द नहीं है पूरी दुनिया का जड़ा माँ साया है। माँ जड़े से धूप च ठंडक बनी करी जड़े से साथ चलती है। माँ की दुआ जड़े से हर मुश्किल काम च आंदा जड़ा साथ है या हर गल जड़े से कबूल करती है। माँ का जड़ा प्यार है से बेहिसाब है उसका कोई यहाँ जिक्र नहीं करी सकते। माँ दे बिना जड़ा जिंदगी है अगर माँ हाँ जो अच्छे संस्कार दिंदे न या अच्छी परवरिश दिंदे न तो हाँ हर जड़ा जीवन की सफलता है से हासिल करी पाते न। अगर हाँ उदास हन तो माँ हाँ जो हसांदी है। अगर हाँ परेशान हन तो माँ हाँ दा जड़ा परेशानी दा हल बनती है। जालू तो हम छोटा बच्चा दिखते न या छोटे बच्चे जो माँ किस प्रकार जड़े से लाड प्यार कर दी है बच्चा जालू रोंदा है तो माँ जड़े से अपनी हर कोशिश पूरी कर दी है कि बच्चा जड़े से थोड़ा दिया चुप होइया कने थोड़ा दिया अपने चेहरे पर स्माइल जड़े से ले हुए तो माँ दी जड़ा गाल लेना से इस दुनिया ते बिल्कुल बखरी है। तो माँ दा मान सम्मान करना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है। माँ जड़े से यहाँ वास्ते बेहतर यानी कि जन्नत ते भी ज़्यादा अहाँ वास्ते अहम भूमिका जड़े से रखती है। माँ जड़े से पिता दा साया भी बनती है। पिता दा साया बनी करी भी अपना जड़ा किरदार है ना से निभाती है क्योंकि माता पिता जड़ा से अहाँ दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करते न। तशोताओं बच्चों जो मैं हमेशा या युवा पीढ़ी है ज़्यादातर हर कोई यही बोलता है कि बच्चे जड़ा से अपना जड़ा गुस्से च अपने माता पिता दा मान सम्मान नहीं कर देन तिना दा जड़ा संघर्ष है उस जो मान सम्मान नहीं दिन देन कि अहाँ दे जड़ा माता पिता न से किस प्रकार अहाँ वास्ते मेहनत करा देन किस प्रकार अहाँ वास्ते रात दिन मेहनत करा देन कि अहाँ दे बच्चे जड़ा न से हमेशा खुश रहन कने सफलता दी ओर जड़े से अगे बढ़न। पर कुथी ना कुथी अगर अहाँ माता पिता की भी गल करा देन बच्चों की भी अहाँ गल करा देन युवा पीढ़ी की अहाँ गल कर देन अहाँ हमेशा अपनी ख्वाहिशा दिखते न पर अहाँ ये नहीं सोचते कि अहाँ दे माता पिता अहाँ वास्ते किस प्रकार मेहनत करा देन। जरा करी तो हाँ ये ऊपर भी गौर करके दिखा ला कि अहाँ दे माता पिता किस प्रकार अहाँ वास्ते मेहनत करा देन किस प्रकार अहाँ वास्ते अपनी जड़ा जान है से निछावर करा देन क्योंकि जान यहाँ बोल ही सकते। माता पिता तो कभी भी अपने बच्चों जो शो ऑफ नहीं होना देंगे कि अहाँ किस प्रकार तिना वास्ते मेहनत करा देन किस प्रकार तिना दी जड़ा देखभाल है से करा देन। थोड़ा दिया सोच विचार तो हाँ करी करी दिखा कने यहाँ थोड़ा दिया फिर ते आगे बढ़ देन चल देन अगली फरमाइश की ओर जाना बंडेरा पार।

ये तुहां सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोता तुहां सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश फिर तहां वापिस जिड़न से अपने गल बात उपर आई हो न कने तुहां सारी इस सफर का जिड़ा इंजॉय है से लै दिन 2-3 बजे तक कने आज अहां जिड़ा खास गल बात करा देन से करा देन मदर्स डे उपर माँ जिड़ा अहां वास्ते कितनी अहम भूमिका अदा करती है तिदे उपर अहां जिड़ा अपनी गल बात करा देन कने तुहां सारे जो ही पता है कि माँ जिड़े से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका जिड़े से अदा करती है। माँ जिड़े से भले ही दुनिया जिड़े से अहां दी फिक्र ना करे पर माँ जिड़े से अहां दी सबसे ज़्यादा फिक्र करती है, सबसे ज़्यादा अहां दा ख्याल जिड़े से रखती है। माँ दे बिना तो जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, तो माँ दा मान सम्मान करना हमेशा अहां दा काम है, तो हमेशा माँ दा जिड़ा मान सम्मान है से ज़रूर करा कने माँ दा जिड़ा ख्याल है से ज़रूर करा। पर आज ही तुहां जिड़े से माँ दा मान सम्मान नहीं करने कि आज यहाँ खास दिन बना देन 10 मई 2026 जो कि आज यहाँ जिड़े से यहाँ बोली था कि माँ दा मान सम्मान करने तो तुहां आज ही किता, तो आज ही नहीं करने हर दिन माँ दा जिड़ा मान सम्मान करने माँ दा जिड़ा अहमियत जिड़े से ज़रूर समझनी है। अगर तुहां माँ दी अहमियत समझना शुरू करें देन उन्हां दा मान सम्मान करना शुरू करें देन कई बार होंदा ना कि बच्चे चाहे स्कूल जांदे न चाहे कॉलेज जांदे न चाहे से अपना कोई और काम कर देन तां जालू घर से पहुँचते न तां सबसे पहले जिहड़ा जुबान पर ना होंदा से होंदा माँ कि माँ जिहड़े से अहां दी कुत्थू है। तो तुहां सारे जो फ्री ते याद आई होना कि अहां भी तो इन्ने ही बोलते कि अहां दी माँ जिहड़े से कुत्थू है चाहे और कुछ मिले ना मिले पर माँ दा जिहड़ा ना है ना से अहां दी जुबान पर हमेशा रहिंदा है। माँ बिना तो जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। तो श्रोताओं फिर यहाँ थोड़ा दे आगे वरना है कने तुहां जो गीत संगीत की ओर लेकर चलना है अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते हैं। अगली फरमाइश अहां जो आई हुए चैतड़ुए ते कने तिना दा नाम है मंगल जी। मंगल जी तक अहां ये गीत पहुँचाते हैं मेरिया खेलणुआ। तुहां सारे भी जरूर इंजॉय करा कने इन्नी सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं तो सारे सुनिया प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश फिर यहाँ थोड़ा दिया अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देन क्योंकि कार्यक्रम का जेड़ा समय है से अपना रफ्तार लेकर जरूर चलिया है तो चलते न समय के अनुसार।

नमस्ते तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ता श्रोताओं तुहां सारे गीत इंजॉय कीता कने फिर ते अहां दा मन कीता कि थोड़ा देर अगे वर्दे न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचान देन माँ दा जेड़ा अहां जिक्र आज करा देन माँ दे उपर अहां गलबात जेड़े से करा देन माँ दी शक्ति माँ दे बिना अगर अहाँ अपना जिक्र कर दी ना कुछ अहाँ जो जड़ा चेहरे पर स्माइल जड़े से ज़रूर फिक्की जड़े से पे आती है।

श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना देते अपनी रेडियो दो शशि कहने तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत फरमाइश। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आयु वे खनियारा ते कने तिना दा नाम वे रीना जी। रीना जी तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने समय जड़े से अहाँ जो इशारा करा दा कि तुहां अनुमति जड़े से जरूर ले लिया। तो माँ जड़े से अहाँ दी हर गलती पर मुस्कुराना जड़े से शुरू करी है कने कोई भी अहाँ गलती कर दे ना तो तिहा जो भुलाई है। माँ का जड़ा प्यार है से भगवान से भी बड़ा है। तो माँ का मान सम्मान जड़े से जरूर करा कने अपनी रेडियो दो शशि दिया अनुमति कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह।

0: रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091710. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय 92.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी।

0: पूरी पाठ है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
1: समझ गए सर।
0: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
2: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
3: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
4: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
5: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
6: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

नमस्ते नमस्कार सभीओ, मेरा प्यार भरा नमस्ते। हाँ, हूँ सचिन कपूर, हाजिर बुआ कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे तो है सब? उम्मीद करनो तो सब ठीक बुणे, खरे बुणे, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बुणे हिन। और हमेशा बोल लो कि तुंदा सभीओ पहला दोस्त गया सो तुंदा अपना शरीर, और अपने शरीर जो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखने वास्ते बिल्कुल वर्कआउट तो करना ही चाहिए सो, तो और जरूर करू करा है ना। चलिए जी, वर्कआउट भी जरूरी है लाइफ में, और पिटारा आंसू गीता रह गया जरूर खोलना। आइए जी, सभी पहले आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रा, पिटारे थो गीत कटी लेंदेन, और हुनंदेन तुसुओ ये गीत।

बहुत प्यारे दे गीत शोतों। और चलिए अब कार्यक्रम मंच असु गल करनी है आज शोतों एजुकेशन रे बारे में। जी बिल्कुल, आजकल जो खास करिंदे बच्चे ना कजो की फोन रा बड़ा बड़ी क्रेज है, और जहने लॉकडाउन लग रो थो शोतों तहने ऑनलाइन क्लास अगेन सो लगना शुरू हुई। तथों बाद किया सो बच्चे का ज्यादा ही क्रेज किया सो फोन नो लेकर ही भुचिगो। बच्चे ज्यादा ही फोन जो लेकर ही कहन सो बड़े सीरियस नजर इंदे न, मतलब की बस तिन्यो फोन चिंदा खंदे फोन उड़दे फोन सुनदे फोन। और फोन ना मंज एजुकेशन किया सो चलो तहने तब हालात ऐसे थे कि करना पे, लेकिन आज हालात ठीक नींद है। आज भी बच्चे कहन शोतों सो एजुकेशन री किनारी ध्यान ना करे करी किया सो फोन ना किनारी ध्यान कर देन। ताज असु इस टॉपिक में जानना, इस कार्यक्रम में जानना कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है असु वास्ते। आइए श्रोतों बिचा बिचा असु गीतरा पिटारा किया सो भी खोल दे रहना है हुन देने गीत।

FM 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहे और कार्यक्रम हिंदी अपनी का पगन सो इस वक्त बिल्कुल लाइव चल रही तुम दे रेडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा आइए श्रोतों कार्यक्रम जो हो बढ़ और हेरा शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण खासकर युवा वास्ते बच्चे वास्ते और आसू वास्ते भी हम बोलना चाहूँ क्यों जो की पढ़ाई लिखाई री कोई उम्र ना मुंदे जस उम्री है तुसू लगा के आसू शिक्षा के आसू ग्रहण करना चिंदे या हगू पढ़ना चिंदा तो सो तु है कंटिन्यू कर सकते हैं शोतो शिक्षा के आसो इम्पोर्टेंट भी है आसू सब भी वास्ते शोतो है ना एक ज्ञान कौशल और सही सोच के आसो प्रदान कर दे है शोतो जस तो व्यक्ति जो बेहतर नौकरी व अवसर भी मिलता है फैसला लेने में क्षमता बढ़ दी है व्यक्ति री है ना तुस कोई भी फैसला लेना था तुम दे जो क्षमता सो बड़े गाने हाँ शो तो है ना तुम दे दायरा के सो बड़े गाना हाँ और समाज में सक्रिय भूमिका किया सो भी एजुकेशन निभन दे हाँ शो तो आइए कार्यक्रम मंच एंजॉय कर दें है गीत

सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और कार्यक्रम मंच तो सब बन रहे बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन के फिर सभी होने आए रहा आइए शतम कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगू लेकर चल दे और कार्यक्रम मंच गल बात चल रही आज एजुकेशन जो लेकर शिक्षा जो लेकर शिक्षा की शतों सो अंधविश्वास और भेदभाव जो खत्म कर दे जो की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंधविश्वास में भी बहुत सारे मनो के अनसो रहते हैं, भेदभाव में भी जाति जो लेकर के अनसो भी आज कनी रेट में बड़े सारे मनो के अनसो रहते हैं, जाए सो यूथ ही को ना वो है ना सो रहता है। एजुकेशन इन चीज़ों भी खत्म कर दिया, नागरिक जो त्यारे अधिकार रे प्रति की आसो जागरूक कर दिया, त्यारे कर्तव्य रे प्रति की आसो नागरिक जो आम नागरिक जो की आसो जागरूक कर दिया शिक्षा स्रोतों और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भी किया सो योगदान कर दिया सोहा शिक्षा स्रोतों तेविलिया एजुकेशन कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट आसो सभी वास्ते है। जो बच्चे और जो युवा सोचते हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, नौकरियाँ लगीगानी आई हैं बुझगाना, नौकरी बेशक लग अच्छा लेकिन एजुकेशन के स्रोतों से कंटिन्यू करना चाहते हैं। बड़ा विकास बुंदा अपना समाज रा भी बुंदा, अपना भी बुंदा, परिवार रा भी बुंदा है स्रोतों। कार्यक्रम जो हगू लेके चल देन खोल देन पिटारा कोर और हुनन देन ए प्यारा देगी।

श्रोता एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुर और हूँ सचिन कपूर। व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा का महत्व श्रोतो ज्ञान और कौशल, शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान करते हा श्रोतो जत्थों व्यक्तिगत जीवन में क्या चुनौती का सामना करने भी किया सो समस्या का समाधान करने में सक्षम बुंदा हा इंसान श्रोतो है ना। बेहतर जीवन मिलता हा श्रोतो शिक्षित मनु जो बेहतर वेतन वाली नौकरी मुड़ी पंदी ने है ना, और त्यारा जीवन स्तर किया सो सुदृगंधा। अगर कोई गरीब बारा बच्चा श्रोतो सो बेहतर पड़ेगा या कोई भी फैमिली में बच्चा जो बेहतर पड़ेगा तो सिर अपना जीवन भी बेहतर बुना सिरे सोगी सोगी सिरे परिवार रा जीवन किया सो भी बेहतर बुचिगंदा शो तो। और अगर तो बेहतरीन नौकरी तो पिले फिर इतों बढ़िया क्या बोल सकता, सुकून री सारी उम्र तुम दे निकलनी है। एक अल्लाह तुसको और किसी भी प्रोग्राम में मैं भी ना होने जो मोलन शो तो, या किसी भी रेडियो स्टेशन में ना होने जो मोलन, सिर्फ तुसको वेड़ी गुंजन में होने जो मोड़ कर दी। और खासकर अपनी गदयाली भाषा में होने मोड़ कर दी तो ठेरा मतलब है सीधा तुम्हे दिला अंदर की आई गल बसो कर दी। आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की जानकारी मिलते हैं, शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करते हैं श्रोताओं, और अपने जीवन रे बारे के सो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वास्ते स्वतंत्रता देंदे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर किसी इंसान वास्ते हर किसी व्यक्ति वास्ते। तो आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो भरंदन थोड़ी करी और हगूँ और मजे छू कर देना। आइए जी फराटी फराटी सोगी सोगी लेन देन गीत

सो तो आज के कार्यक्रम में तो है सभी है एजुकेशन रे बारे जितना भी है इक्की घंटे दसी सकते थे सो है तू सो दस हुआ हेरा शिक्षा के एजुकेशन के सो सकारात्मक योगदान है तुंदे जीवन में सकारात्मक सोच है तुंदे जीवन में और ऐसा सोच जो बढ़ाना तुंदा काम हा कसकी ओरी रे काम नहीं कजो की पढ़ना तो तू सो पहना है सो तो व्यक्ति जो जिम्मेदार हो नैतिक सिखंदी हा शिक्षा ताकि सो समाज में सकारात्मकता लेकर सकारात्मक सोच किया सो लेकर सकारात्मक योगदान किया सो व्यक्ति दिया जो वेल एजुकेटेड हा। चलिए श्रोताओं तो आऊँ सचिन कपूर ले लेनू तुसु थो इजाजत गद गदे वाला चानो माँ बुढ़े री सेवा कर दे रहे और एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सो एजुकेशन जो कैरी ऑन करा एजुकेशन जो अपू सो गे रखा श्रोताओं और पढ़ते चलना। नमस्ते धर्मशाला।

ज़िंदगी में एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर हाजिर हो गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा, और शाम के 6 बज चुके हैं श्रोताओं। और आपको बता दें कि आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। संडे की ये शाम आपकी और भी हसीन मनाने के लिए ये कार्यक्रम लेकर हम आ पहुँचे हैं। श्रोताओं, संडे का दिन अपने आप में ही बहुत मस्त होता है, अच्छा होता है और खुशियों से भरा होता है, और शाम जो है वो भी अच्छी हो जाए उसके लिए हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। और इस कार्यक्रम में रोज़ाना की तरह आपके साथ होंगी बहुत सारी बातें, और साथ ही आपको मनोरंजन करवाएंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। साथ ही आपको बताएंगे कि आज आपने कौन सा दिन सेलिब्रेट किया और उस दिन को आप लोगों ने कैसे मनाया होगा, उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं प्यारे से गीत के साथ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी बातों के साथ। तो श्रोताओं, आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी इस समय सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। शाम का ही समय होता है और श्रोताओं, जब हम प्यारे प्यारे गीतों को सुनते हैं, खैर गीत तो हम दिन में भी सुनते हैं और कई लोग तो भाई रेडियो जो है वो हमारा घरों में चला रहता है, घरों में क्या, कई सारे जो दुकानदार हैं उनके यहाँ भी कभी हम भी अगर विज़िट करते हैं तो हमारा ये रेडियो उनकी दुकान पर जब बजता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और श्रोताओं, ये जो प्यारे प्यारे गीत हम सुनते हैं उस समय जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो गीतों के साथ साथ हमें भी मन कर पड़ता है कि हम भी उन गीतों को साथ में गुनगुना लें और कहीं ना कहीं अपना मनोरंजन जो है हमारा रेडियो करता है। तो श्रोताओं, आपकी इस मनोरंजन का ख्याल रखते हुए हम गीतों को फेर बदल करते हुए लेकर आते रहते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं। श्रोताओं, आज रविवार का दिन है और आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज संडे के साथ साथ हम सभी ने अपना एक ख़ास दिवस जो है मनाया और आपने ज़रूर इस बारे में मॉर्निंग प्रोग्राम में भी सुना होगा जो कि हमारा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम आता है गुड मॉर्निंग धर्मशाला, उसमें भी आपने आज ज़रूर सुना होगा मदर्स डे पर। तो ज़्यादा बात तो ना करते हुए थोड़ी सी बातों में मैं आपसे यही कहूँगी कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्यारा एहसास होती है जो बिना कहे हमारी हर बात समझ जाए, वही माँ होती है। और आज मदर्स डे पर दुनिया की हर माँ को दिल से सलाम, उनके प्यार त्याग और ममता को हमारा नमन है। श्रोताओं, फिर कार्यक्रम में एक बार मैं यही कहूँगी कि इन दिनों के लिए हमें कोई एक दिन जो है वो चुनकर नहीं रखना चाहिए। मातृदिवस आज ज़रूर हमारे कैलेंडर्स में है, हमारे फ़ोन में है, हमारे स्टेटस पे है, हमारे फेसबुक पर है, लेकिन ये दिवस रोज़ होना चाहिए। हमें अपनी माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके त्याग को, उसके प्यार को, उसकी ममता को हमेशा नमन ज़रूर करना चाहिए। तो आप सभी माताओं को हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला के पूरे परिवार की ओर से नमन है और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और माँ की बात हमने छेड़ी है तो एक प्यारा सा गीत माँ के नाम पर तो बनता ही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं और इस समय आप सुन रहे हैं गीत खलनायक फिल्म से जगदीश सिंह की आवाज़ में। माँ की ममता पर आप बहुत भावुक और दिल को छू लेने वाली बातें कर सकते हैं श्रोताओं, लेकिन हाँ कई बार हमें टाइम नहीं मिलता और हम लोग माँ के साथ बैठकर बात भी नहीं करते, लेकिन आज अगर हम अपनी माँ को कुछ दे सकते हैं तो वो है अपना समय। बिल्कुल अपनी माँ को समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए और उनके साथ अपने दिल की हर वो बात कहिए जो आप बचपन में भी कहते थे। श्रोताओं, माँ वो होती है जो खुद तकलीफ में रहकर भी अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। माँ की ममता किसी शर्त में बंधी नहीं होती, वे हर हाल में अपने बच्चों का साथ देती है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ की दुआएं हमारे साथ खड़ी रहती हैं। श्रोताओं, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वे हमें हर दिन प्यार संस्कार हिम्मत देकर

नया जीवन देती है। तो ऐसे में हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि माँ का कर्ज हम भरें। खैर, हम जितनी मर्जी दौलत भी उनके कदमों में रख दें तब भी हम उनका कर्ज नहीं भर सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें सम्मान देकर, प्यार देकर और उनका साथ देकर, उनके साथ कुछ पल बिताकर ज़रूर उन्हें अच्छा फील करवा सकते हैं। तो श्रोताओं, आज का ये दिन मदर्स के लिए है स्पेशली, क्योंकि वैसे तो हम रोज़ अपनी माँ से प्यार करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हाँ, आज उन्हें ज़रूर स्पेशल फील करवाना तो बनता ही है। कार्यक्रम में हम अब आगे बढ़ेंगे और कैलाश खेर की आवाज़ में आप तक पहुँचाएँगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और आपको हम बता दें कि ये कार्यक्रम आप रोज़ाना सुनते हैं शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। वैसे तो हमारे सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें समय का भी पता होता है और प्रोग्राम का नाम भी पता रहता है, लेकिन कई हमारे नए जो श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और उन्हें हम ज़रूर अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, समय के बारे में भी बताते हैं श्रोताओं। और आज जैसे कि खास बात हम कर रहे हैं मातृ दिवस पर, और मातृ दिवस जो है वो आज सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों में ही है श्रोताओं, लेकिन दिल में हमेशा हमारे माँ का प्यार रहता है और रहना भी चाहिए। कार्यक्रम में आपने इस गीत से पहले गीत सुना जिसमें कि एक बहुत प्यारी लाइन आई थी, अपने बच्चे तुझको प्यारे रावण हो या राम। बिल्कुल, माँ की ममता ऐसी होती है, उसका बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो रावण हो चाहे वो राम हो, लेकिन माँ अपने प्यार में कभी कमी नहीं आने देती। उसके लिए उसका बच्चा अपनी इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा सबसे प्यारा बच्चा होता है। माँ यशोदा को देख लीजिए, श्याम जो कृष्ण भगवान थे वो बहुत नटखट थे और बहुत सारे लोग उनके लिए ताने मारते थे और बहुत सारी शिकायतें लेकर आते थे, तो यशोदा उन्हें डांट के वापस भेज देती थी। वो कहती थी कि ये सभी लोग झूठ बोलते हैं, मेरे बेटे को तंग करते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, माँ का दिल ऐसा ही होता है, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ भी सुन भी नहीं सकती है, तो ऐसे प्यार को प्यार मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से यही आज के दिन आपको संदेश है हमारा। साथ ही श्रोताओं, आपको कार्यक्रम में जानकारियाँ भी हम पहुँचाते हैं और आपके साथ बातचीत भी करते हैं, साथ ही गीतों की जो श्रृंखला एक शुरू होती है वो आगे भी बढ़ती है, वो आगे बढ़ेगी श्रोताओं, लेकिन कार्यक्रम में अभी के लिए समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी हमारे साथ ज़रूर जुड़े होंगे। इस समय श्रोताओं, आप बाहर जो मौसम है उसका आनंद लेते होंगे, क्योंकि हल्की फुल्की गर्मी तो है, ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि गर्मियाँ इस बार आई ही नहीं हैं और गर्मियों में शायद इस बार थोड़ी सी गर्माहट कम है। हल्की फुल्की जो गर्मी है वो पड़ रही है, लेकिन हाँ, लोग जो हैं वो अपनी रूटीन जो है वो बिल्कुल बनाए रखे हुए हैं सैर करने की। ये समय बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं वॉक पर निकलने के लिए और लोगों के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन हमारा ऐसा व्यस्त रहता है कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। और आज संडे था, लेकिन संडे में भी हमें बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो हम सोचते हैं कि आज हम निपटा लें, और उन्हें निपटाने में दिन भी निकल जाता है। तो शाम का ये समय श्रोताओं, ज़रूर अपने लिए समय निकालिए और बाहर निकलिए, थोड़ी सी जो ताज़ी हवा आजकल चल रही है उसका भी आनंद लीजिए और बाहर निकल के मुस्कुराइए, लोगों के साथ मिलिए। लोगों के साथ मिलना और बातचीत करने से हमारा बहुत सारा तनाव जो है वो भी कम होता है और हमें अच्छा महसूस भी होता है। और साथ ही रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हमेशा तैयार रहता है आपका मनोरंजन करवाने के लिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे हम लेकर आए हैं दयावान फिल्म से। आवाज़ें हैं इस गीत में पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की।

0: पर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, जिसमें ये बताया जा रहा था कि किसी से आज मुलाकात होने वाली है, पर उसके बाद क्या होगा ये दिमाग में चल रहा था। तो श्रोताओं, आज भी आपने शायद किसी से, आपकी भी आज पहली मुलाकात हुई होगी और आपने भी ये गीत गुनगुनाया होगा। आज नहीं तो कल किसी ना किसी की किसी ना किसी से मुलाकात तो होगी ही होगी। तो श्रोताओं, अगर आपकी भी किसी से मुलाकात होने वाली है तो आप भी इस गीत को गुनगुना सकते हैं। और श्रोताओं, जैसे कि ऐसे गीतों को तो हम कार्यक्रम में लेकर आते ही रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन कुछ एक गीत जो होते हैं वो एक ख़ास दिन के लिए स्पेशल रखे होते हैं, जिन्हें हम स्पेशल ही चलाते हैं या आपको सुनवाते हैं और हम भी उसी बहाने से उनको सुनते हैं। तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं मदर्स डे की, जो कि हम अपनी माताओं को प्यार सभी करते हैं और अपनी माताओं को आज का दिन हमने ज़रूर विश किया होगा, उन्हें उनके फेस पर थोड़ी सी स्माइल भी दी होगी और प्यार से पुचकारा भी होगा, प्यार से गले भी लगाया होगा। अगर नहीं तो आप अभी भी अपनी माँ के पास जा सकते हैं, उन्हें प्यार कर सकते हैं, उन्हें अच्छा फील करवा सकते हैं। श्रोताओं, इसके लिए हमें किसी दिन का ख़ास इंतज़ार नहीं होना चाहिए, हमें रोज़ाना उन्हें वो प्यार वो सम्मान ज़रूर देना चाहिए। चलिए फिर कार्यक्रम में चलते हैं, ऐसे गीतों को सुनते हैं जो गीत हम कभी कभी ही बजाते हैं और कभी कभी ही सुन पाते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। तो बच्चे जैसे भी हों, वो माँ को प्यारे होते हैं और माँ उनकी अटखेलियों से खुश होती है उन्हें देखकर, और उन्हें देखकर जीती भी है। श्रोताओं, सहारा फिल्म का ये गीत था और आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। जिसका बेटा राजकुमार उसके घर में सदा बहार, बिल्कुल जिनके बेटे राजकुमार जैसे होते हैं उनके घर में सदा बहार रहती है। तो भाई हम यही कहेंगे कि अच्छे बेटे बनिए, अच्छी बेटियां बनिए और राजकुमार राजकुमारी बनकर घर में रौनक रखिए और माँ का हमेशा ध्यान भी रखिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि कार्यक्रम में हम आपके साथ बातचीत के साथ साथ जानकारियाँ भी साझा करते हैं, जानकारियों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे। आजकल हमारा जो समय है वो ज़्यादातर व्यस्त जा रहा है, ख़ास करके हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए, क्योंकि गेहूं की जो फसल है वो खेतों में लहलहा रही थी और लोगों ने कुछ ने जो है वो काट के रख भी ली है, फ्री हो गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को अभी तक कुछ कोई घरों के फंक्शन थे, शादियां हैं या कुछ भी है, तो वो लोग जो है वो फटाफट अपने काम को निपटा रहे हैं। ऐसे में जब हमारी मेहनत का फल हमें मिलता है तो हमें अच्छा लगता है श्रोताओं, और ये सब काम करने के लिए सुबह का और शाम का समय बहुत अच्छा रहता है। खेत खलिहान हमारे जो हैं वो हमारी पहचान होते हैं और उनमें जब हम अपनी मेहनत को देखते हैं या पाते हैं तो अपनी खुशी जो है वो हम बता बता कर थकते भी नहीं हैं। तो श्रोताओं, हम यही कहेंगे कि जो ये खेतीबाड़ी के काम होते हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आजकल बड़े बुज़ुर्ग जो है वो करना पसंद करते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल के बच्चे हैं, वो थोड़ा सा उससे कतराते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास भी जगह ज़मीन है तो इस काम को आप और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और एक रोज़गार भी आप कमा सकते हैं। तो कोई भी काम करने में कभी भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। श्रोताओं, हमारी सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत है और सेहत के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ करना भी हमें चाहिए, उस पर भी हम आज कार्यक्रम में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम भी सुनते हैं और आप भी सुनिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, दिल उसे दो जो जान दे दे और जान उसे दो जो दिल दे दे। तो दिल और जान जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और सच में दिल भी उसी को दिया जाता है जो सच में हमारे लिए जान दे सकता हो, और हम जिससे प्यार करते हैं उसे जान भी दे सकते हैं। तो ये तो रही प्यार की बातें श्रोताओं, और अब आपको जानकारी दे दें एक बहुत ही ज़रूरी, धर्मशाला में रहने वाले सभी श्रोताओं को और साथ में उन श्रोताओं के लिए जानकारी है जो कि क्रिकेट प्रेमी हैं। तो कल की हम बात कर रहे हैं धर्मशाला के HPCA स्टेडियम की खूबसूरत वादियों में सोमवार को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला मुकाबला होगा, जिसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे होंगे और इस मैच को आप ज़रूर इन्जॉय भी करेंगे। इस जानकारी के बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाते हैं। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आपने सुना मोहब्बतें फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो रहा है समाचारों का। तो चलते हैं, पहले सुनते हैं समाचार, बाकी की बातचीत समाचार के बाद।

0: जागृति शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
1: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में

इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम के समय इस समय आप सभी सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और समाचारों के बाद अब एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और एक बार फिर से आप सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और ज़रूर कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, चलते हैं, बढ़ते हैं और मनोरंजन करते हैं। एक प्यारा सा गीत सुनते हैं पहले कार्यक्रम में और बाकी बातें करते हैं उसके बाद। और अब आप तक पहुंचा रहे हैं शिकार फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, गीत संगीत जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी में इसके साथ जुड़ना चाहिए, इसे शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम कार्यक्रम में कई बार कहते हैं कि अगर हम घर पर अकेले हैं या घर के कोई काम कर रहे हैं तो हमारा साथ देता है हमारा रेडियो। जब प्यारी प्यारी बातें और प्यारे प्यारे गीत रेडियो पे सुनने को मिल जाते हैं तो हमारा बहुत सारा काम ऐसा है जिसे करते करते हमें ना तो थकान होती है ना ही समय का पता चलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसे आप आज़मा सकते हैं और ज़रूर आप कहेंगे कि सच में कितना ही काम क्यों ना हो, अगर गीत संगीत थोड़ा सा हमारे कानों में पड़ता रहे और हम साथ में गुनगुनाते रहें तो कब वो समय निकल जाता है, कब वो काम हो जाता है पता भी नहीं चलता। और श्रोताओं, आज का दिन आज रविवार था और रविवार की शाम पर हम आ पहुँचे हैं। आज दिन भर में हमने वो सब काम किए होंगे जो हमने पूरे हफ्ते में सोच के रखे होंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रोज़ाना हम नहीं कर पाते, लेकिन हाँ संडे का दिन जो है वो हम सोच के रखते हैं कि आज हमने ये सारे काम करने हैं, निपटाने हैं। और बहुत सारे काम निपटाने के बाद जो खुशी होती है उसका तो अपना ही मज़ा होता है। श्रोताओं, संडे का दिन हम आपसे ये भी कहेंगे कि बच्चों को, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी अपने छोटे छोटे काम करने के लिए दीजिए ताकि वो भी सीखें कि अपने हर काम को हम कैसे कर सकते हैं और काम कैसे किए जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि वो बच्चे हैं उन्हें ना कहें, हम खुद ही हर काम करने लग पड़ते हैं। खुद भी कीजिए, लेकिन छोटे छोटे काम जो बच्चे कर सकते हैं उन्हें करने के लिए अगर आप कहेंगे तो उनका इंटरेस्ट जो है वो काम में बनेगा और बच्चों का ध्यान थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन से बाहर आएगा या फिर और जो भी मतलब के काम होते हैं, जैसे कि कहीं भी किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना या आर्ग्यूमेंट्स करने, उनसे बच्चा थोड़ा सा दूर रह सकता है। तो ऐसी बहुत सारी काम हैं जो आप उनसे करवा सकते हैं और उन्हें अपने साथ हेल्प भी करने के लिए कह सकते हैं। तो श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बातों के साथ साथ गीतों की जो श्रृंखला हमने चलाई होती है उसे भी आगे बढ़ाना है। तो चलते हैं, सुनते हैं झूठ बोले कौवा काटे फिल्म का ये प्यारा सा गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आपने सुना ये गीत, और इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे करेंगे बातचीत। श्रोताओं, आप लोग, हम लोग जो आपसे बात करते हैं उसके पीछे यही रहता है कि हम लोग भी कई बार कुछ बातें देखते हैं, सोचते हैं और वो आपके साथ साझा करते हैं, और ज़रूर हमारी बात सुनकर भी आप उन बातों पर गौर करते होंगे और सोचते होंगे। तो एक बात जो है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि कुछ दिनों से कई लोगों के घर में मेरा आना जाना हुआ, तो मैंने देखा लोगों ने पिंजरे रखे हैं और पिंजरों में छोटे छोटे पक्षी जो हैं वो पाल रखे हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि उनका जो दायरा है जो बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी कि उनके लिए खुला आसमान बना हुआ है, और उन्हें जब छोटी सी जगह में सीमित कर कर हम रख लेते हैं तो उनके अंदर क्या चलता होगा, उनकी सोच क्या रहती होगी। हो सकता है कि अगर हम छोटे से पक्षी को शुरू से ही पिंजरे में रखते होंगे तो उसे लगता होगा कि हमारा जो संसार है वो इतना सा ही है, लेकिन जब वो खुले आसमान में उड़ते होंगे तो उन्हें और अच्छा लगता होगा। अगर हमें भी हमारी जगह या हमारा दायरा भी छोटा कर दिया जाए तो हमें भी घुटन होगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे श्रोता कार्यक्रम की में इस बात को सुनकर सहमत ना हों, लेकिन अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसे परमात्मा ने जितनी जगह दी है उसे उस जगह में रखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की ज़िंदगी में खुलकर जीना और मुस्कुराना और खुश रहना ज़रूरी है। तो अगर आप भी ऐसा रखते हैं या सोचते हैं तो थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिए और पक्षियों को पिंजरे में ना रखें, उन्हें खुले आसमान में उड़ने दीजिए, क्योंकि उनके लिए खुला आसमान बना है और वो वहाँ जितना खुश रह सकते हैं वो छोटे से पिंजरे में शायद वो उन्हें खुशी ना मिलती हो। ये कार्यक्रम के माध्यम से छोटी सी बात थी जो आपके साथ हमने कही है। श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे, हम साथ साथ हैं इस फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और श्रोताओं गीत के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम में 99.86% अंक प्राप्त कर मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाली जिला कांगड़ा के AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहाड़ा की छात्रा अनमोल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी ये उपलब्धि मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उपायुक्त हेमराज वैरवा ने कहा कि अनमोल ने कठिन परिश्रम और लगन से न केवल अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे जिला कांगड़ा को भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अनमोल सहित सभी मेधावी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच से जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उपायुक्त ने अभिभावकों तथा शिक्षकों को भी विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय देते हुए उनके अनुदान की सराहना की है। तो श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला का परिवार भी अनमोल को उसकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। और साथ ही कार्यक्रम में हम ये भी कहेंगे कि देखिए, आपकी मेहनत कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, उसी पर आपका रिजल्ट भी आधारित रहता है। इसी तरह से हमें ऐसे बच्चों से सीख लेनी चाहिए और एक कठिन परिश्रम की तरफ बढ़ना चाहिए। ज़रूर परिश्रम करने वालों को उनकी मंजिल मिलती है और सफलता तो मिलती ही मिलती है। तो इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत अ लव स्टोरी फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार शानू और जावेद अख्तर की।
1: सीखिए पाधानी सा।

1.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद कार्यक्रम में हम फिर से लौटेंगे और फिर सुनवाएंगे आपको प्रेरणादायक कहानी। तो कहानी आपने सुननी है तो जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

श्रोताओं, इस छोटे से ब्रेक के बाद कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एक बार फिर से हम आ पहुँचे हैं और ज़रूर आप भी कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि इस ब्रेक से पहले हमने कहा था कि अगर आपको कहानी सुननी है तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और हमारे श्रोता हमसे बहुत प्यार करते हैं, ज़रूर जुड़े रहते हैं। तो चलते हैं, आज की कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। एक बार श्रोताओं, एक लड़का समुंदर के किनारे बैठा हुआ था और बहुत उदास था। उसे लगता था कि ज़िंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया है। कई बार ऐसा होता भी है हमारी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा होता चला जाता है और हम गिले शिकवे करने बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तभी वहाँ से एक बुज़ुर्ग जो थे वो पास से गुज़रे और उन्होंने आकर रेत पर एक लाइन खींच दी। उन्होंने उस लड़के से कहा, इसे छोटा करके दिखाओ, यानी कि इस लाइन को छोटा करके तुम्हें दिखाना है, लेकिन हाँ, इसे मिटाना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो लड़का सोच में पड़ गया कि मैं इस लाइन को बिना मिटाए छोटा कैसे कर सकता हूँ। फिर उसने दिमाग लगाया और फिर उसने क्या किया, उस लाइन के पास ही एक और लाइन खींच दी जो कि उस लाइन से थोड़ी सी बड़ी थी। अब क्या था, पहली जो लाइन थी वो अपने आप छोटी दिखने लगी और उस पर बुज़ुर्ग मुस्कुराए और बोले, ज़िंदगी में दुखों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अपने हौसले और सोच को बड़ा करके उन दुखों को छोटा ज़रूर किया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी हर चीज़ छीनने नहीं आती, कभी कभी हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने भी आती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हमारे साथ कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो और हमें ऐसी सोच आए कि ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, तब ये सोचिए कि हमारे लिए इससे भी बेहतर कुछ है, लेकिन हमें उठकर हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। तो श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और अब हम आगे बढ़ेंगे, किशोर कुमार की आवाज़ में सुनेंगे एक और प्यारा सा गीत मुनीम जी फिल्म से। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को और आपके साथ हम भी इंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, शाम का ही समय है और स्वास्थ्य पर थोड़ी सी बात हम करेंगे कि आजकल देखिए साग सब्जी जो है वो फ्रेश हमें मिल जाती है और कोशिश कीजिए कि आप अगर घर पर थोड़ा बहुत अगर बागवानी करना पसंद करते हैं तो ज़रूर छोटी मोटी सब्जियों को अपने घर में उगाना शुरू कीजिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए और दवाइयाँ जो भी आपको लगी हैं अगर आप खाते हैं तो उन्हें टाइम पर ज़रूर खाएं। हाँ, और दवाई अगर कोई खाते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट जो है वो देखना ना भूलें। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी शिमला है, अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम, मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन, 26, 28 व 30 मई को तीन चरणों में होगा मतदान। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार, 15 मई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की मेरिट सूची में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है। मेरिट सूची में कुल 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिले के निजी स्कूल पहाड़ा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
3: इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने पर टीचर की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल CBSE के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, JEE में चाहिए होते हैं, UPSC में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए।
2: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश भर में 2,384 केंद्र बनाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र से परीक्षा केंद्रों में ऑडियो वीडियो कैमरा के माध्यम से निगरानी रखने की भी योजना है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
1: इस बीच प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल करने वाले कांगड़ा जिले की छात्रा अनमोल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को दिया है। अनमोल ने बताया कि उनका सपना भविष्य में अध्यापिका बनना है।
4: नाम अनमोल है और आज 10th बोर्ड का रिजल्ट निकला है। मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं रोज 5-6 घंटे पढ़ने बैठती थी और इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी टीचर्स और स्पेशली हमारे स्कूल के MD मैम, प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर को जाता है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है और केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। पालमपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर नगर निगम के लिए स्पष्ट विजन लेकर आई है और इसे आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार और निदेशक निपुण जिंदल ने शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने लोगों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक और नवाचार का उपयोग कर लोगों को प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद, कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बेसहारा पशुओं, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पालमपुर में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पालमपुर शहर का विकास ठप है और केंद्र द्वारा स्वीकृत सीवरेज योजना में भी बड़ा घोटाला किया गया है।
5: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक यहाँ तो नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि BDO का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, BDO का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डिनोटिफाई करके चले गई।
1: जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के दाड़ी में भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार केवल बदले की भावना से काम कर रही है और जनहित की योजनाओं को रोक रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 15 मई को की जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 व 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ऊना जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 3,79,459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,88,945 पुरुष जबकि 1,84,724 महिला मतदाता है। भाजपा ने सोलन नगर निगम चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि पार्टी संगठन विचारधारा और अनुशासन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं की करेगी। पार्टी ने उम्मीद जताई कि सोलन की जनता विकास, पारदर्शिता व मजबूत नेतृत्व के पक्ष में मतदान करेगी और भाजपा को भारी जनसमर्थन प्राप्त होगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे। राज्य में मई महीने के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कल 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो अलर्ट, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में पुरानी पेंशन योजना को बहाल रखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। 26, 28 व 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार। 15 मई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद अब कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी समाप्ति की ओर है, यानी कि अब हमारे पास आपके लिए या आपके साथ बतियाने का समय जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम में होगी आपसे बात श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले आपको ज़रूर सुनवा कर जाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में बुलंदी फिल्म के इस गीत के साथ ही आप अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की इजाज़त। आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जय हिंद।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जा करके लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे
2: कर्तव्य?
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।